आयरो गायरो नत्तो खैरो, ये गीत हम आपको सुनाए हैं और फिल्म कलंक में से निकाल के हमने पेश की प्रीतम के साज पर। जी हाँ, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जो देन हाग शहर से प्रसारित हो रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म होली आयरे में से निकाले नेगेटिव सेफ इंतख का ये गीत है मैथ मुकेश, इस तरह से।

मैं थी मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने, चार गाने रखे हैं। अब सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दो बदन में से है।

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर मेरा साया में से, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो ये अभी तो झीलें में से निकाल रहे हैं, निकती सीफ न सीफ तक, चलो सुनते हैं। चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ,

तू लाली है सवेरे वाली फिल्म है अभी तो जी लें नीतिन सैफन सैफन तक आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तब ढूंढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नीतिन सैफन सैफन तक ये गीत हम आपको सुनाए ओ प्रोफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

है इसी में प्यार की आबरू, मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। मैं भी एक गीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत भी चून करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।

हरिओम, एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को सत श्री अकाल, हरिओम, हरि बोल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्ण दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्त भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रात्रि का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। गीत और गजल और तीस बोल संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ यारो, यही आशा उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहां पर भी जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ रात्रि प्रकट हो। मैं थी फील लॉइस्टर प्लेजीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आपके सेवा और खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चून है द प्लस रेडियो पर नतुलक उक्त बलैस्त्र फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन एफएम चैनल पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में तेरिस कांतोर उरन ऑफ 07-365-2247। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरखीत है उनसे क्वालिटी इस टू खरांसी एना तो लिख ना तो लिख ना तो लिख फूटी से आउते लेकर दर बै फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम सुना, जो खास करके छोटा भाई यारू का यार जिगरी दोस्त महान अनाउंसर साथी द वन एंड ओनली करण सिंह जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया। जिस तौर तरीके से भाई करण जी हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सेवा करते आया है, ये उम्मीद है फुल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई करण जी, और हमारे फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन एक जश्न मनाया जा रहा है, शायद आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं, विवाह संस्कार के तैयारियां में भी हो शायद लगे हो आप, जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियां पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परमपिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को हमेशा की तरह सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। ही फील्स डायरेक्ट में सिटीवाद से जो बीमार लाचार है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। जिंदगी के मजे जरूर रोजाना लेते रहना और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी खूब जोर तोर से सुनते रहना। फन हार्ट बीट शॉप। आप कामयाब हुए हो तो तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां हमारे फुल टीम की तरफ से, और अगर नहीं हुए हो बंधु तो चिंता के कोई बात नहीं है ना। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ फुर्तराव जोर तोर से बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो देखना कामयाबी कैसे दौड़ दौड़ कर जल्द से जल्द आकर आपके कदमों को चूमेंगे। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो, नोइट ऑफी फैबो तो खलेर। देश में प्रवेश हुए हो तो फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम आपको, फेन फकंसी एंड नैचुरली ब्लाइ फ्लाइज ट्रेनर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, यू गोना लाइक इट।
देश की छोड़ के देश आप विदेश यात्रा पर जा रहे हो तो फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ यात्रा। Fijne vakantie natuurlijk. Tamam luk sunte hai faun Hindustani Radio ko op een vakantie adres internet kelehro duara da plus radio kelehro duara. To aap bhi sunie faun Hindustani Radio ko op uw tablet, smartphone of laptop. Zo bent u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk the one and only Den Haag Sherka faun Hindustani Radio. 24 hours at your service. प्रिय श्रोताओं, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करता आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार 1972 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हमेशा की तरह सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरालो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते रहते हैं यारो कि हैव टू नाश्ता होते लीफ, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो। खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे, अति सुंदर प्रोग्राम लेकर आया हूँ। खास करके अगर आप पुराने नगमे पसंद करते हैं तो पुराने ज़माने के महान संगीतकार बेताज बादशाह के नाम से भी जाने माने जाते थे ये महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी के कुछ नगमे लेकर आया हूँ। और 10 से तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, कुछ शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि प्रकट हो। घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। रवि साहब आइए और सुनाइए।

गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। हमारे प्रिय श्रोताओं, वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम की तरफ, और वो है एक अति सुंदर प्रोग्राम। आज का इस हसीन रात्रि जो आप सभी के नाम है, लेकर आ रहे हैं मशहूर गाने वाली हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के मधुर आवाज में, फ्रॉम द पुराना मूवी बैंक मैनेजर। मेरा दिल बर हजारों में एक है, मिल के सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, मैस्ट्रो मदन मोहन जी के साज पर।

Beautiful song, wonderful song by Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle ji, from the movie Bank Manager. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार लाते हैं आप श्रोताओं की सेवा में मशहूर गाने वाली भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी मिनिस्टर 1959 मदन मोहन के साज पर राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ अति सुंदर बयान उन आंखों में नींद कहां लता जी

Beautiful song by Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji, from the movie Minister 1959. Madan Mohan ji ke saaj aur sangeet par aur iti sundar bayan ko likha hai Rajinder Krishan ji ne. एक अति सुंदर बयान रख चुका हूँ आप श्रोताओं की सेवा में और सुनाने को जा रहे हैं इस बार द किंग ऑफ मेलोडी सुरों का बादशाह रफ़ी साहब जी. क्या आवाज़ है, क्या सजाया है ये नगमा को मदन साहब जी ने इतना फीलिंग से. महान लेखक राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान की मेरा पैगाम मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं. वन ऑफ माई फेवरेट रफी साहब जी का आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम मिलकर सुनते हैं.

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना दिया आप सभी को, सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। इट्स अ अनरिलीज्ड सॉन्ग। तो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं यारो, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने आज़ादी, छुटकारा, फ्रीहिट के बारे में इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखकर चले गए हैं यारो। कुछ जीवित है और कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं, और ये इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अशोमील लेकर के इन बातों से कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे, तो जरा गौर फरमाएं। कहकर गया है श्री योहान कास्पर लाफातेर, है वाज एन स्विट्जरलैंड थियोलॉग एंड मिस्टिकस, लीव्ड फ्रॉम 1741 टू 1801। और योहान कास्पर लाफातेर ने कहा है आजादी के बारे में यारो की, द फ्रीहिट ओम टू बेड्रेगन, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivel. Een hele goeie hoor. Agemekaiser Dietrich Bonhoeffer, hij was een Duits kerkleider en verzetsstrijder, leefde van 1906 tot 1945. और डिट्रिख बोनहोफर ने कहा है फ्रीहिट आजादी के बारे में यारो की, गहोरसामहिट हैंडल्ड सोंडर टू फ्रागन, फ्रीहिट फ्रागत नार द बेटेकनिस। आगे में कही है श्री रोसा लुक्सेमबर्ग जी ने, ड्यूट्स मार्क्सिस्टिस पॉलिटिका एंड फिलोसोफ, लीव्ड वन 1871 टू 1919। रोसा लुक्सेमबर्ग ने कही है आजादी के बारे में यारो की, फ्रीहिट इज द फ्रीहिट फॉर द अंडर्स डेंकेंडन। नोग इंटे वन रोसा लुक्सेमबर्ग, ड्यूट्स मार्क्सिस्टिस पॉलिटिका एंड फिलोसोफ, 1871-1919। रोसा लुक्सेमबर्ग ने एक और कही है यारो, और वो कही है कि फ्रीहिट फॉर द अनहांगर्स फन द रेगेरिंग स्लेक्स फॉर द लीडन फन द पार्टे अल सेन से नोग सो टालरेक इस गेन फ्रीहिट। फ्रीहिट बेटेकेंट इमर फ्रीहिट फॉर अंडर्स डेंकेंडन। आगे में कहा है श्री मैशियावेली, है वाज एन फ्लोरेंटाइन्स स्टेट्स फिलोसोफ, इटालियन दस, leefde van 1469 tot 1527. Machiavelli nekha hai azadi ke bare mein yaro ki, als iemand de baas wordt van een stad die gewend is in vrijheid te leven en hij haar niet vernietigt, moet hij erop rekenen door haar vernietigd te worden. Hugo de Groot, hij was een Nederlands rechtsgeleerde en schrijver, leefde van 1583 tot 1645. Al Hugo de Groot nekha hai azadi ke bare mein yaro ki, vrijheid is de macht die we hebben over onszelf. Broeder Roger van Thaizee, Zwitsers theoloog en oprichter van de Thaizee gemeenschap, leefde van 1915 tot 2005. O broeder Roger van Thaizee, hij azadi ke bare mein yaro ki, wat betekent vrijheid als het zelfzuchtig gebruik ervan de vrijheid van anderen aantast? Mahaguru Sri Buddha, hij was een spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama, liefde van circa 370 voor Christus tot 450 voor Christus. Om Mahagyani Sri Buddha ne kaha hai azadi chutkara ke bare mein yaro ki,
ook een hele goeie hoor. Zoals de grote oceaan slechts één smaak heeft, die van zout, zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak, die van vrijheid. Eentje om in te lijsten hoor. Dag Hammarskjöld. Hij was een Zweeds diplomaat en van 1953 tot 1961 was hij VN-secretaris-generaal en leefde van 1905 tot 1961. O, dag Hammarskjöld, Nikahai Azadike Barmiaroki. Vrijheid van angst zou een samenvatting van de hele filosofie van de mensenrechten kunnen zijn. En de laatste van vanavond, Kahe Malcolm de Chazal. Hij was een Mauritiaans, Franstalig schrijver en schilder. Leefde van 1902 tot 1981. O Malcolm de Chazal, Nikahe Azadike Barme Yaroki. De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen. Ja, wat. Dan maar een periode. Heb je een kutje kahoute, udaharan suna. Jo azadi chutkara vrijheid ke bareme jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over vrijheid gaan. Je yasha umidlekar in batokome aap sabhi ko sunaya ki kuch na kuch seekh to hamesha in baton se hum log seekhenge. To program ko aage badhate hain, ek ati sundar bayan aap sunenge. Kismat jo pilaye humko. Ay the film Ladka Ladki Queen of Rock and Roll once again Asha Bhosle ji Madan Mohan ji ke saaj par.

beautiful song uit die Sundar Bayan uit de film Ladka Ladki met een mohonji ke saaj par suna di aap sabhi ko. Queen of rock and roll Asha Bhosle ji. Ik het is onder mezidaar aap sunenge yaro aur is baar late hai program mein म्यूजिक डायरेक्टर मशहूर गाने वाली द ग्रेट उषा खन्ना जी के मधुर आवाज में आई द फिल्म लड़का लड़की 1966 कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन वो आ रहे हैं।

तो आज का इस हसीन प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं स्पेशल मदन मोहन जी का एक आखिरी बयान आप श्रोताओं की सेवा में मैं पेश करूंगा। नैना बड़े से रिम झीम क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में।

बेड़से रिम जिम क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना आज का इस हसीन कार्यक्रम में, जो स्पेशल आप सुन रहे थे मैस्त्रो मदन मोहन जी का, वो समाप्त होने को आया। तभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून ऑन, आप ही का आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटिलिक उक्त ब्लॉस्ट्रिफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर वर्ल्ड वाइड। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम। नैतिक वर्क्स बॉयस एंड बदंग, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो जरूर अपने व्यापारी के बारे में, एक ऑर्गामान हो ऑर्गावुमन हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से ऐलान जरूर कराना यार, किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी बेल तेरस कंतोर यूर अपने 7 3 6 2 2 7 40। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लेत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 07 3 6 2 2 7 40 पर आप तार करें। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना। इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड हमारे फुल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ। कुछ नगमे रह गया है फ्रॉम द मूवी तर्राना सुनाने के, तो एक ही दम एक बार फिर भारत रत्न लता जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे मुझे रूठ गए मेरा सांवरिया, अनिल दा के साइज पर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है मुझे रूठ गयो मेरा सांवरिया फ्रॉम द मूवी तराना 1951 भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अनिल दा के साइज पर। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं और एक और अति सुंदर बयान है ओम किपफेल फॉर्म द क्रेग द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी एक बार फिर सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक मैं हूं एक मेरी ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट तलत जी का स्पेशल।

एक मेरी द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म तराना कंपोज बाय अनिल विश्वास जी। अब आप सुनेंगे पार्ट टू फ्रॉम द सॉन्ग मुसे रूट गयो मोरा सांवरिया। एक बार फिर लता जी द सेट वर्जन।

सुंदर बयान मुझे रूट गई मोर सांवरिया द सेट वर्जन भाग टू क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अनिल विश्वास की साज पर फ्रॉम द मूवी तराना। तुम्हारी प्रिय प्रिय श्रोताओं कुछ आखिरी शेर्स हो जाए हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है दोस्ती के नाम पे यार की दोस्ती का पहला पैगाम आपके नाम, दोस्ती का पहला पैगाम आपके नाम, जिंदगी की आखिरी सांस भी आपके नाम। रहे सलामत ये दोस्ती अपनी, रहे हमेशा सलामत ये दोस्ती अपनी, इसे सलामत रखना आपका काम है। जिंदगी की हर अदा में याद रखना, दिल की हर सदा में याद रखना, यही तोहफा बहुत है मेरे लिए आपका, यही तोहफा मेरे लिए बहुत है आपका, खुलूस दिल से हर दुआ में याद रखना। दोस्ती इंसान की जरूरत है, दिलों पे दोस्ती की हुकूमत है, आपके प्यार की वजह से जिंदगी है, आपकी प्यार की वजह से जिंदगी है, वरना खुदा को भी हमारी जरूरत है। आंखें आपकी हो पर आंसू मेरे, जिंदगी आपकी हो पर सांसें मेरी, दिल आपका हो पर धड़कन मेरी, जिंदगी की आखिरी मोड़ पर दुआ होगी, यही है दुआ मेरी। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, दीप तो आंधी में भी जगमगाते हैं, दीप तो आंधी में भी जगमगाते हैं, फूल तो कांटों में भी महकता करते हैं, कितने नसीब वाले होते हैं वो, कितने नसीब वाले होते हैं वो जिन्हें आप जैसे दोस्त मिला करते हैं। क्या बात है, जियो यारो। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और एक दर्द भरी बयान है लता जी के मधुर आवाज में अनिल दा के साज पर की, वापस ले ले ये जवानी।

दर्द भरा बयान वापस ले ले ये जवानी, फ्रॉम द मूवी तर्राना, मधुबाला जी के ऊपर ये अति सुंदर बयान पिक्चराइज किया गया है अनिल दा की सांच पर लता जी के मधुर आवाज में। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, फ्रॉम द मूवी तराना एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और एक बार फिर महान गाने वाली, मेरे ख्याल से भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी एक ऐसा गाने वाली थी जो शायद भारत देश में कभी नहीं पैदा होगी। वो दिन कहाँ गए बता ऐ फिल्म तराना, एक बार फिर लता जी अनिल दा के सांच पर uit 1951, een hele jonge stem van onze Nightingale.

क्या बात है, व्हाट अ वॉइस, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, और ये भी साथ ही साथ आखिरी बयान था इस फिल्म तराना अनिल विश्वास जी के मधुर संगीत पर। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी गाने आप सुन चुके फिल्म तराना का। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1951, हलचल। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुसन द ग्रेट नरगिस जी के साथ, और साथ ही साथ उस जमाने के महान अभिनेत्री द ग्रेट सितारा जी के साथ। म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद शाफी के साथ पर आप सुनेंगे सुरों का बादशाह रवि साहब और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी के मधुर आवाजों में। लागी है आग दिल में, क्या बात है वाह।

अति सुंदर बयान है श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। लागी है आग दिल में, ऐड फिल्म हलचल 1951 मोहम्मद शाफी सैयद हुसैन के साथ पर सुना दिया आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी uit 1951. Wat waren hun stemmen toen nog jong, zeg. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये अशोक

इंडियन पॉप म्यूजिक और उसके बाद कुछ नए नए आवाजें फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन है ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है। अब हमारे बात एक से एक कोली खास आप सभी को सेवा करने वाले हैं। खास करके शुरुआत करते हैं हम लोग महान अनाउंसर साथी भाई अमित कुमार जी के साथ, उसके बाद भाई दिलीप जी, भाई पवन है भी प्रोग्राम में, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मज़े लेते रहना। मैं आंध्र को लेखस और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ ना।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतीलिक उक्त बलैस्त्र फिया इंटरनेट के लहर द्वारा foundfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम हो आप जरूर तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 9 2 13 65 98। जो भी रेडियो का काम हो देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो खास फरमाइश हो जरूरी खबरें या तो आप अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर या तो आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गामान हो ऑर्गावुमन हो इवेंट ऑर्गेनाइजर और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन रहे भी है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहर द्वारा द प्लस रेडियो के लहर द्वारा। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार्ट बैंस ऑफ द एस्ट प्लांट। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से यारों की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप जरा आजमा कर तो देख सभी जानकारी इसके बारे में आप तैयार करें और 0 2 13 65 98 पर आप तार करके इसके बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। जो भी रेडियो का काम हो देंगन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो रेक्लाम बनाते रहना हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी जोर तोड़ से हम लोग

के बारे में बातें शातें करते रहते हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का रिक्लाम भी बनाते रहते हैं। तहदिल से धन्यवाद। बेंचनों खेलत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 70 2 13 65 98 पर। यू बेन फन हार्ट वेलकम। तो आप भी आए कि इस हसीन जो प्यारा सा हैप्पी हैप्पी फाहुन फैमिली है उसमें भी आप आकर शामिल हो जाए। 70 2 13 65 98 पर आप तार करें। वरके में तो आप भी एक ही दम लेकर बढ़ते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। और जैसे मैं आप सभी को आगामी में कह चुका था कि बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म आदमी तक, और इस मूवी जो रिलीज किया गया था 1968 में दिलीप साहब ने काम किया है। मलकाय हुस्न द ग्रेट एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी के साथ, और साथ भी दे रहा है इस मूवी में दिलीप कुमार जी के साथ महान अभिनेता द ग्रेट मनोज कुमार जी। शाकिल बदायूनी के अल्फाजे और संगीत है महान संगीतकार श्री नौशाद अली जी का। तो उसी फिल्म में से नगमे आप सुनेंगे, कुछ नगमे रह गया है सुनाने के लिए। अगला बयान, मैं टूटी हुई एक नैया हूं, क्या बात है, पद्मश्री सुरों का बादशाह रवि साहब जी के मधुर आवाज में। मिलके सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

मैं टूटी हुई एक नैया हूँ। अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला नगमा, एड फिल्म आदमी, कंपोज बाय मैस्ट्रो नौशाद अली, और सुनाया आप सभी को महान गायक सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, रवि साहब जी। फिल्म आदमी से कुछ जबरदस्त नगमे आप सुन रहे हैं, और जैसे आप लोग को मालूम है तो सिर्फ नगमे आप सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप साहब ने काम किए। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं, एक जबरदस्त द्वैत है रवि साहब और महेंद्र कपूर जी का, ये अति सुंदर द्वैत मिलके सुनते हैं, जबरदस्त कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो नौशाद अली। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, क्या बात, वाह।

ए व्हाट अ सॉन्ग, कैसी हसीन आज बहारों की रात है। दर्द भरी ये अति सुंदर बयान, जिसे सुन के रोंटे भी खड़ा हो जाते हैं। एड फिल्म आजमी कंपोज बाय मैस्ट्रो नौशाद अली, और जिस खूबी से ये दो महान गायक, जैसे असल में तो ये गुरु और चेला थे, और दोनों ने इतनी खूबी से ये बयान को पेश किया, तारीफ़ काबिल, तारीफ़ काबिल। अगला बयान और साथ ही साथ ये भी आखिरी बयान है एड फिल्म आदमी, जबरदस्त सॉन्ग है रफ़ी साहब जी का, ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग भी है, कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ दे, क्या बात है। आगे सुनिए महान संगीतकार नौशाद अली के सांच पर, और अल्फाजे तो है लेखक बदायूं का, गला सुरों का बादशाह, किंग ऑफ मेलोडी, रफी साहब जी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आदमी आज पुरानी राहों से, ग्रेट कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो नौशाद अली, और सुनाया आप सभी को सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी नगमा आप सुन चुके एंड फिल्म आदमी, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1956 में, सगीना माहातो। इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है अपने पूज्य अर्धांगनी सहरा बानो जी के साथ। संगीतकार है एस डी बर्मन साहब, और सुनाते हैं उसी फिल्म में से आप सभी को ये अति सुंदर बयान की गजब चमकी बिंदिया तोरी, और वो भी आधी रात को। क्या बात है, अर्षा भोसले जी और किशोरदा के आवाजों में।

0: सुंदर मजेदार सॉन्ग गजब चमके बिंदिया तोरी आधी रात हसीनों का पुजारी किशोरदा और अशा भोसले की आवाजें साथ कोरस भी थे एस डी बर्मन के साथ पर ये थी सुंदर बयान आप सभी ने सुना द फिल्म गीना महातो 1957 तक उसी फिल्म में से आप नगमे सुन रहे हैं अगला बयान द फिल्म गीना महातो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे एक बार फिर हसीनों का पुजारी की शोरदा के मधुर आवाज में
1: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे सोता है बहुत जागा है ना

0: भोले वाले ललुआ, भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले।

0: नगरी हमारी।
1: जा भग, जा भग।
2: सजनी तो कहे आई नगरी।

ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, आग लगी मेरी झोपड़िया में, क्या बात है। मजेदार सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सगीना महातो 1970, कंपोज बाय माएस्ट्रो एस डे बर्मन जी, और सुनाया आप सभी को हसीनों का पुजारी किशोर दा। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ शेर शायरी जो दोस्ती यारी के बारे में जाता है। दूर हो गए हमारे चाहने वाले, दूर हो गए हमारे चाहने वाले, याद बहुत आए हमें भूलने वाले। मिट गए थे हम जिनकी चाहत में, मिट गए थे हम जिनकी चाहत में, वो कभी लौट के नहीं है आने वाले। लोग पूछते हैं क्यों सुर्ख है तुम्हारी आंखें, हंस के कह देती हूं रात को सो ना सकी। लाख चाहूं भी मगर ये कह ना सकूं, लाख चाहूं भी मगर ये कह ना सकूं, रात को रोने की हसरत थी मगर रो ना सकी। आज तेरी याद को सीने से लगाकर रोए, अपने ख्वाबों में तुम्हें पास बुला के रोए। हजार बार पुकारा तुम्हें तन्हाई में, हजार बार पुकारा तुम्हें तन्हाई में, और हर बार तुम्हें पास ना पाकर रोए। यूं किसी की याद में रोना फिजूल है, इतने अनमोल आंसू खोना भी फिजूल है। रोना तो उनके लिए जो हम पर निजार है, रोना तो उनके लिए जो हम पर निसार है, उनके लिए क्या रोना, उनके लिए क्या रोना, जिनके आशिक हजार है। क्या बात है। वो सो जाते हैं अक्सर हमें याद किए बगैर, हमें नींद आती नहीं उसने बात किए बगैर, हमें नींद नहीं आती उनसे बात किए बगैर। कसूर उनका नहीं, कसूर तो हमारा है, उन्हें चाहा, उन्हें चाहा भी तो हमने उनकी इजाजत के बगैर। ये बात है। शाम से आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। आगे मैं कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। यारो साला मैं तो साहब बन गया, उसी फिल्म सगीना महातो में से अति सुंदर बयान आप सुनेंगे 1970 एस डी बर्मन के साक्ष पर। एक बार फिर हसीनों का पुजारी किशोरदा। बोले बाप रे बाप, बोले साला मैं तो साहब बन गया, तो बन जाओ ना साला मैं।

0: बंधन।
1: साला में तो सांप बन गया, क्या बात है। एड फिल्म से गीना महातो ने 1977 एस डे बर्मन के साथ हसीनों का पुजारी की शोरदा के मधुर आवाज में फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। नकमे आप सुन रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किया है। अगला बयान और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सबको तुमरे संग तो रैन बिताई साथ दे रहा है एक बार फिर किशोरदा एस डी बर्मन।

0: क्या हुआ?
1: अति सुंदर बयान तुम्हारे संग
2: तो हेलो टू
1: रैन बीताई। और ये भी आखिरी बयान था फिल्म जो अभी आप सगीना महातो रिलीज किया गया था इन 1987 तक, सभी गाने में सुना दिया। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1987 तक और इतना चला कि क्या बताएं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म गोपी का, जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुए थे। तो उसी फिल्म में से अब आप नगमे सुनेंगे। और इस फिल्म गोपी में एक बार फिर दिलीप साहब ने अपने लवली वाइफ सैरा बानो जी के साथ काम किया है और साथ भी फरीदा जलाल भी इस फिल्म में काम किए हैं ओम प्रकाश जी के साथ। निरूपा रॉय जी भी संगीतकार है, महान संगीतकार जोरी द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। तो उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग भजन है रफी साहब जी का, राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे की, सुख के सब साथी दुख में ना कोई।

जबरदस्त कंपोजिंग बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी फ्रॉम द मूवी गोपी 1970 राजेंद्र कृष्ण के क्या अल्फाजे और सुना दिया आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रवि साहब जी। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं सुरों का देवी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे द फिल्म गोपी अकेले ही अकेले चला है कहां मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और क्या अल्फाज है राजेंद्र कृष्ण जी का मिलके सुनते हैं अ ग्रेट सॉन्ग स्पेशल

Lahe Kaha uit de film Gopi 1970, Rajender Krishan Kalikhawayati Sundar Bayan, composed by the brothers Kalyanji Anandji. Aur suna hai aap logo ne Lata Mangeshkar ji ke madhur awaaz mein. Tumhare priye priye shrotaon, abhi aap vigyapan sunenge, desh videsh ka samachar. उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। गर्मी का मौसम है, आप भी जाइए कुछ ठंड ही पीजिए या जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, और ब्रेक के बाद जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत, तो जरूर प्रोग्राम को फॉलो करते ही रहना।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और तब लुस्तर फिया द प्लस रेडियो एंड नेचुरली इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड 24 घंटे रोजाना लगातार जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाइशों जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो तो देखना कमाल ही कमाल हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डिवाइस सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, जरूरी खबरें हो या तो फरमाइशें हो या अपने व्यापारी के बारे में, हम लोग कमर्शियल बनवा कर और जितने बार आप चाहे यार उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को देश भर में नहीं मिलेगा यारों। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटाइनेंस कांतोर यूर ऑप 07-213-65-98। तो जो भी रेडियो का काम हो देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप दार करें अपने एकदम लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के तरफ यारो। और बीते हुए सप्ते में आप सभी को सुना दिया था फिल्म कब फिर मिलोगी जो 1974 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया था माला सिन्हा और विश्वजीत के साथ। तो सभी नगमे तीन नगमे सिर्फ थे इस फिल्म में। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1974 में, फिल्म बैराग। और इस मूवी में दिलीप साहब ने अपने बीवी धर्मपत्नी मलकाय हुस्न सैरा बानो जी के साथ काम किया है। संगीतकार है द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। तो उसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग छोटी सी उम्र में सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी आनंद बख्शी के अल्फाज़ और द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी के साज़।

मैं मर जाऊंगी छोटी सी उम्र में लग गया रोग, क्या बात है। जो फिल्म बैराग निकली सेशन सेफ्टर, दिलीप कुमार और सायरा बानो का ये ब्यूटीफुल मूवी में से ये सॉन्ग आप सुना, लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में, आनंद बख्शी के अल्फाज से, और साज था द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी का। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं, और इस बार एक मजेदार सॉन्ग है, पीते पीते कभी कभी यूं। आगे सुनिए एड फिल्म बैराग कल्याण जी आनंद जी के साथ, शुरू का बादशाह रवि साहब और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के मधुर और ब्यूटीफुल आवाज़ें।

जाम बदल जाते हैं, हो जाता है यारो। अनंत बख्शी के अल्फाजे कल्याण जी आनंद जी के साज और आवाजे थे कोरस और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले और पद्मश्री मोहम्मद रवि साहब जी। सारे शहर में तुझ जैसा कोई नहीं है, क्या बात है, कैसा तारीफ है कि सारे शहर बंबई बहुत बड़ा। और दिलीप साहब कह रहा है कि सारे शहर में आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, अपनी बीवी को कह रहा है। तो मिलकर सुनते हैं आइडियो फिल्म बैराग, जो पति पत्नी ने मिलकर इस फिल्म में काम किए आनंद बख्शी के अल्फाजे और कल्याण जी आनंद जी के साथ रवि साहब और आयशा जी के आवाज़ें।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे ही हो तुम, वैसे ही हो।

सारे शहर में आप सा कोई नहीं। एडो फिल्म बैराग 1976 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जियानन जी, आवाजित है आशा जी और मोहम्मद रफी साहब जी का, और लिखा है अति सुंदर बयान को महान लेखक आनंद बख्शी जी ने। मैं बैरागी, क्या बात है, एक से एक अति सुंदर सुंदर नगमे। इस फिल्म में भी एक भजन फोर आया था और वो मैं आप सभी को सुनाने को चाहता हूँ। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, महान गायक पद्मश्री महेंद्र कपूर जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप सुने, कॉम्पोज बाय कल्याण जियानन जी।

ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, फ्रॉम द मूवी बैराग 1976, पद्मश्री महेंद्र कपूर जी के मधुर आवाज में, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। अगला बयान के तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को हमारे प्रिय श्रोताओं, और इस बार आप सुनेंगे मैं बैरागी लेकिन मैं जोर जोर से नाचूं। एक फिल्म बैराग 1976 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, अल्फाज है आनंद बख्शी का और आवाज भारत रत्न लता जी और सुर का बादशाह रफी साहब जी।

सुनो एक बात सुनाओ, झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या

चुने यारो गीत और गजल और इस गोद नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। वक्त हो चुका है कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ दोस्ती के बारे में।

भुलाना गलत है, दोस्त को भुलाना गलत है, उन्हीं का जिंदगी भर साथ है। अगर भूल गए तो खाली हाथ है, अगर भूल गए तो खाली हाथ है, और अगर साथ रहे तो जमाना कहेगा क्या बात है। दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर दोस्ती अपने जैसी हो तो इतिहास बनाती है। दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दोस्तों को बेवफाई का तोहफा मत देना। कोई तुम्हें रहे याद करके, कोई तुम्हें रहे याद करके, ऐसा कभी मौका मत देना। खुदा करे सलामत रहे किसी दुआ की तरह, खुदा करे तुम सलामत रहे किसी दुआ की तरह, एक तू और दूसरा मुस्कुराना तेरा। क्या Trust is like a mirror. Once you break it, you can never look at it the same again. तुम हमेशा खुश रहो ऐसी दुआ है हमारी, और आगे बढ़ते रहो ऐसी दुआ है हमारी। तुम जहां भी हो जैसी भी हो, एक दिन हमें ढूंढ पाओ, ऐसी ख्वाहिश है हमारी। तो था कुछ शेर्स आगे के प्रोग्राम में, कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारो, और जैसे मैं आप सभी को कहा ना कि सभी नगमे फिल्म बैराग का मैं आप सभी को सुना दिया, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1981 में, और जबरदस्त कास्टिंग इस फिल्म में किया गया था, खास करके मनोज कुमार जी के डायरेक्शन में। और मनोज जी तो उसको प्यार से लोग भारत भी बुलाते हैं ना, तो जबरदस्त फिल्म था, ब्लॉकबस्टर मूवी। और इस फिल्म में दिलीप कुमार जी ने एक महान रोल अदा किया, और दिलीप जी के साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर द ग्रेट मनोज कुमार जी, साथ में हेमा मालिनी जी, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, प्रदीप कुमार जी, शशि कपूर, सारिका, क्या बात है, जबरदस्त स्टार कास्ट इस मूवी में था। तो इसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और गाने सभी लिखे हैं संतोष आनंद जी ने। तो मिल के सुनते हैं ये एक सुपरहिट एवरग्रीन सॉन्ग, जो देखा जाए तो 26 मिलियन से ज़्यादा बार लोग सुन चुके हैं इस सुपरहिट सॉन्ग को। तो एक बार हम फिर भी आप सभी को सुना देना कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, क्या बात है, स्पेशल आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम।

फ्रॉम द सुपरहिट मूवी क्रांति, माइटी मुकेश जी का सुपुत्र नितेन मुकेश जी के मधुर आवाज में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी साथ दे रही थी। महान लेखक संतोष आनंद के लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग कंपोज बाय एलपी लक्ष्मीकांत प्यारे लाओ। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं एक बार द सेम कॉम्बिनेशन, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी मिलकर सुनाते हैं लोई शमाशा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर संतोष आनंद का अल्फ

0: Chennai Jore Garam Babu uit de film Kranti 1981, A Great Composing by Mahan Sangeetkar Jori Lakshmikant Pyarelal, Mahan Star and Singing Cast. और ये नगमा आप सभी को सुनाया नितिन मुकेश रवि साहब लता जी और किशोर दा। तो दोस्तों अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, आप भी जाइए कुछ इस्तेमाल कीजिए, चाय कॉफी या जो आप पी रहे थे उसको बैफिल कीजिए और साथ ही साथ विज्ञापन और देश विदेश का समाचार भी सुनते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।
1: न्यू डीएबी प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने।

राम के अनन्य भक्तों, प्रभु प्रेमियों, प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके गोपाल परदेसी बाबा की तरफ से राम राम। नाना प्रकार के राम अवतारा, रामायण सबको किए अपारा। भक्तों, जिस प्रकार समय समय से राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में दुनिया में भी विभिन्न प्रकार से रामचरित्र का वर्णन किया गया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों भक्तों में से राम कथा के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो भक्तों, भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया, फिर भगवान से सुनकर ये प्रसिद्ध कथा काकभुशुंडी जी ने अपने पक्षियों के समूह में बैठकर गरुड़ जी को सुनाया। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की। तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। रामायण में सबसे अधिक मूल्यवान यानी विशेष बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण ये कथा मानव को सच्ची राह दिखाती है। भक्तों, इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणियों ने अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं। प्रिय प्रभु प्रेमियों, ये महान गाथा संप्रदाय और जात पात को ना देखते हुए हर प्राणी की आत्मा को छूती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती के प्राणों में शक्ति प्रदान करती है, हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव तभी मनाया जा सकता है जब हमारे मन में प्रेम, सच्चाई और विश्वास हो। ये राम कथा रस गंगा जहां भी बही, सबने उसका स्वागत किया, फिर चाहे वो धरती का कोई भी कोना क्यों ना हो। सज्जनों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए श्री राम के प्यारे भक्तों, शुभारंभ करते हैं रामायण का प्रथम काम।

परम वंदनीय प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तगणों, कवियों के समाज में चंद्रमा के समान सुशोभित श्री तुलसीदास जी के अनुसार राम कथा सुंदर करतारी संशय वेहक उड़ावनहारी अर्थात प्रभु श्री राम जी के लीलाओं की गाथा अत्यंत सुंदर है एवं प्राणी मात्र की प्रत्येक शंका का समाधान करती है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम से

शैलसुता पार्वती को जब तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए, तब आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब शिव जी पति रूप में अवश्य मिलेंगे। और भक्तों, उधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव भोलेनाथ को पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार किया। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे आदिदेव, हे प्राणनाथ, हे कृपा निधान, मुझे उस नाम का रहस्य बताइए जिसका आप सुमिरन और

शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी वो कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे काकभुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई थी। जगत प्रसिद्ध के कई देश में धर्म और नीति का पालन करने वाले प्रताप भानु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके भाई का नाम अरिमर्दन था एवं धर्म रुचि नाम का बुद्धिमान मंत्री भी था, परंतु विप्र समुदाय के श्रापवश उनको कुल समेत राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। ये तीनों ही क्रम से रावण, कुंभकरण एवं विभीषण के नाम से पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए।

भगवान अग्निदेव ने यज्ञ से प्रसन्न होकर जो हविष्यान राजा को दिया था उसे खाकर तीनों रानियां कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा गर्भवती हो गई। तीनों रानियां मन में बड़ी हर्षित हुई। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए चहुं ओर हर्षोल्लास छा गया। इस प्रकार 9 माह बीत गए जब और वो समय आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। नक्षत्र योग लगन एवं वार सभी अनुकूल हो गए। पावन चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी।

श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के चूड़ाकरण नामकरण उपनयन आदि संस्कार विधिवत किए गए। भगवान श्री राम जी ने अनेक प्रकार की मनमोहक बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। एक बार माता कौशल्या ने बाल रूप श्री राम को पलने में सुलाकर पूजा घर में ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने बालक श्री राम को वहां भोजन करते देखा। माता पलने के पास गए तो शिशि को पलने में सोता देखकर विस्मित रह गए। भक्तों, इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हुए श्री राम जी सबको विस्मित करते

महाराज दशरथ ने मुनिवर विश्वामित्र के सन्मुख हाथ जोड़कर जैसे ही कहा कि मुनिवर, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, ये चार पुत्र मैंने वृद्ध अवस्था में बहुत प्रयत्न से पाए हैं, आप इन्हें छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए, चाहे मेरे प्राण मांगो, मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे और राज सभा से उठकर चल दिए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांत किया और राजा को समझाया कि राजन, राम लखन को आप मुनिवर के साथ भेज दीजिए, राम लखन कोई साधारण बालक नहीं है,

प्रभु श्री राम तो पृथ्वी पर नर लीला रचाने और राक्षसों के विनाश हेतु अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने मारीच की मायावी शक्तियों को देखकर उसे बिना फर का बाण मारकर लंका भेज दिया, ताकि सीता हरण के समय वहां स्वर्ण मृग बनकर काम आ सके। इसके पश्चात महामुनि विश्वामित्र के पास मिथिला के महाराज राजा जनक के यहां से सीता स्वयंवर का समाचार आया। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लखन को साथ लेकर मिथिला के लिए चल दिए। मार्ग में अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, जो श्रापवश पत्थर बनी थी, भगवान की चरण कमल पड़ते ही नारी रूप होकर अपने पति गौतम ऋषि के लोक में

श्री गंगा जी की पूजा अर्चना एवं स्नान करके मुनि विश्वामित्र आनंद कंठ भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ लिए जनकपुरी में पहुंचते हैं तथा वाटिका में ठहर जाते हैं। राजा जनक वाटिका में ही उनसे भेंट करने पहुंचते हैं। मंगल मूल श्री राम को देखकर जनक जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो मुनिवर श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। लक्ष्मण के मन की बात जानकर प्रभु श्री राम गुरु जी से नगर भ्रमण की आज्ञा लेकर नगर के बाजारों में घूमकर आते हैं।

राम के अनन्य भक्तों, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार महादेव के धनुष पर प्रत्यांजा यानी धनुष की डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। और आज धनुष यज्ञ का वो पावन दिन आ गया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश देश से राजकुमार पधारे हैं। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी धनुष यज्ञ में आए। रंगभूमि की शोभा अवर्णनीय है। महाराजा जनक का मंत्री स्वयंवर में आए हुए राजाओं को राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई।

राजा जनक की शोक एवं व्यंग भारी वाणी सुनकर शेष अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, सूर्यवंशी वीरों के होते हुए धरती को वीरों से खाली कहना अनुचित है। यदि भैया श्री राम जी आज्ञा दे तो मैं विध्यांचल पर्वत को फूंक मारकर मच्छर के समान उड़ा सकता हूं। इस धनुष की तो बात ही क्या। तो भक्तों, तब मुनि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करके श्री राम जी को कहा कि हे पुत्र, तुम उठो और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर जनक के शोक दूर करो और उनकी प्रतिज्ञा पूरी करो।

बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार से संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। नगर में बाजे बजने लगे। सज्जन लोग प्रसन्न एवं दुष्ट उदास हो गए। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तभी शिव धनुष का टूटना सुनकर भगवान परशुराम जी रंग भूमि में आ पहुंचे। तन पर विभूति, विशाल ललाट पर त्रिपुंड, सिर पर जटा शोभायमान हो रही है। कांधे पर तरकस एवं एक हाथ में सुंदर फरसा धारण किए हुए हैं। सबने मुनिवर को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया एवं मुनि विश्वामित्र गले मिले

ऋषि परशुराम का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता। जब श्री राम जी ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमारा सिर तो सदैव आप ही के चरणों में रहा है, आपके चरण हमने छाती पर लिए हैं, ये कहकर श्री राम जी ने परशुराम जी को उनके पूर्वज भृंग ऋषि जी का पद चिन्ह अपने हृदय पर दिखाया। तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो स्वयं श्री नारायण है। तब उन्होंने बारंबार श्री रामचंद्र जी की वंदना की और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की।

प्रभु श्री राम जी के भक्त जनों, इस प्रकार श्री राम जी और जनक दुलारी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। बारात जिस समय अयोध्या वापस आई तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। माताओं ने सीता सहित चारों बहुओं की आरती उतारी, मंगल गान हुए। राजा ने बहुमूल्य हीरे मोती स्वर्ण गौ आदि दान किए। प्रभु प्रेमियों और श्री राम जी के भक्त जनों, जो भक्त प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र एवं विवाह गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद होगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम।

प्रेमी भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रथम कांड जो बाल कांड के नाम से प्रसिद्ध है यहां समाप्त हुआ और अब आप दूसरा यानी अयोध्या कांड सुनिए।

जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम सभी को राम राम करते ही नमस्कार आदाब और सत्यकाल हो। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सर, जो आज का प्रोग्राम हम आप लोग के करते हैं, कुछ भजन कार्यक्रम हम आप लोग के करेंगे दोस्तों। और सभी को हमारा राम राम, जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचे, हमारा प्यार भरा दुलार पहुँचे, नमस्कार पहुँचे, अदा पहुँचे, हर एक को हमारा दुआ पहुँचे, सलाम पहुँचे और राम राम नमस्कार। पूरा टीम के तरफ से, द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से हर एक को राम राम नमस्कार। आज देखा जाए तो भजन का प्रोग्राम है, हम कुछ भजन प्रोग्राम करेंगे। आधा घंटा मैं लेट हूँ और हम भजन करेंगे। एक घंटा का प्रोग्राम है भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप लोग के सुनाने वाले है और हर एक को एक बार फिर से हमारा नमस्कार हो। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे प्यारे दोस्तों, ये भी कहना चाहता हूँ। जो लोग इस वक्त अपने नौकरी पे जा रहे हैं, अपने काम करने के लिए, हर एक को बचा के जाना चाहिए, संभल के जाना चाहिए। जिस घर में दुख है वहाँ पे हम शामिल है, जहाँ सुख है वहाँ भी हम शामिल है, यही हम आप लोग के कह सकते हैं। और हम प्रोग्राम को चलाएंगे, कुछ भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप लोग के सुनते हैं। शिव मंत्र

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। काफ़ी लोग हैं जो आज पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ फूल अर्पण कर रहे हैं। आज भी शिवा का दिन है। जो जो लोग शिवा के याद करते हैं, हर एक के लिए ये मैंने आप लोग की सुनाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम चलाएंगे एक दो शिवा के कुछ भजन है जो आप लोग के मैं सुनाऊंगा। बोल मत जाना, मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ देर सिर्फ शिवा गणेशा और इनका भजन मैं आप लोग के सुनाऊंगा। और हर एक को शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। हर एक का दिन भगवान ऐसे करे कि आज काफ़ी अच्छा दिन आप लोग के हो। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं और चलते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव जी का कुछ भजन है जो हम आप लोग के सुनाना चाहते हैं। अभी क्या भजन आपने सुनी है, जो भी आज इस वक्त अपना पूजा पे ही अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फूल को अर्पण करते हैं हर एक के लिए ये सब भजन हम चलाते हैं। और एक शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो, यही मैं कह रहा हूँ। और पूरा टीम की तरफ से, फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हम चलते ही ओम नमः शिवाय।

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हम चलते ही ओम जय शिवा ओमकार।

कदम हैं और हम आप लोग के मिल के सुनेंगे कुछ शिवा के भजन हैं और कुछ अभी हम गणेश के एक दो भजन चलाएंगे। चलो हम सब मिल के कुछ भजन करते हैं, जो भी अपना पूजा पे है या अपना फूल अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हर एक पूजा करने वाले के लिए इस भजन है।

ओम हर हर हर ओम महादेव। क्या इसमें क्या ताकत है, भगवान में क्या ताकत है, मैं ये मांगना चाहता हूँ भगवान अपना पूरा टीम की तरफ से, फागुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हर एक घर का दुख दुख करना, हर एक घर की जो बीमारी है दुख करना, इस दुनिया में जो हो रहा है उसे बचा के रखना मालिक, हर एक के दुख दूर करना, तंदुरुस्ती दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे के लोग अपना चीज कर सकते हैं और हर एक बीमारी से बचाइए भगवान। जो भी कुछ करना चाहता है हर एक चीज पूरा कीजिए, आप ही है, आप तो है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के रखवाला आप ही है, शिवा ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही लोग है जो इस दुनिया के चला रहे रचा रहे हैं, जैसे चाहते ही वैसे आप रचा रहे हैं, दुनिया को बना रहे हैं और हर एक के घर घर के जो प्रॉब्लम है उसे दुख करना सॉल्व करना मालिक आप ही है, यही मांगता हूँ। हर एक बीमारी से बचाइए। हम आप लोग के लिए चलते ही गणेश के मंत्रा है, विष्णु का मंत्रा है, लक्ष्मी का मंत्रा है, देखा जाए शिव मंत्रा है, दुर्गा मंत्रा है, हनुमान का मंत्रा है, यही सब है जो दुनिया में दुनिया चलाते हैं, इससे बड़ा और कोई नहीं है, इन सबसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, यही है जो दुनिया चला रहा है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मालिक आपसे हर एक को बचा के रखना, संभाल के रखना, इंसान की जिंदगी बहुत गिनती है मालिक, बचा के रखना, हर एक बीमारी से बचा के रखना।

जी हाँ दोस्तों, ये था गणेश का मंत्र। हम सब अंदाज नहीं लगा सकते ही कि इसमें कितना ताकत है। बहुत ही ताकत है, बहुत ही ताकत है। ये मंत्र को हर एक को जानना चाहिए। हमारा हिंदू भाइयों जो है इसे जानना चाहिए। इसमें वो ताकत है जो हम कही नहीं सकते हैं। चलो दोस्तों, हमें चलते हैं हरिओम शरण की तरफ।

जहाँ दोस्तों दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हरि ओम शरण की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम आप लोग कले चलते विष्णु मंत्र से, इसमें क्या ताकत है हम सब मिलके सुनते हैं। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू।

सच बात है तेरा लीला हमेशा न्यारी रहेगी। ये था ब्रह्मा विष्णु महेश, और जैसे आपने सुना इस भजन को, जो सुन रहा है वो समझ भी रहा है, यही सब है जो दुनिया चलाने वाला है। दुनिया हम नहीं चलाते हैं, दुनिया ये लोग चलाते हैं, और इससे बड़ा और कोई नहीं है। हमें मानना चाहिए कि यही है दुनिया के रखवाले। हम सदा अपने हाथ जोड़ के इनके पैर पकड़ते इस दुनिया को संभाल के रखना, भगवान यही मांग है मेरा। चलो हम आगे चलते हैं। हरिओम शरण की आवाज़।

सबसे पहले सभी को हम राम राम नमस्कार आदाब और सत्यकाल कहते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो अब से लेकर 12 बजे तक हम आप लोग के साथ रहेंगे, जहां तक की आवाज़ पहुंचे, हमारा ढेर सारा पैगाम पहुंचे, ढेर सारा प्यार पहुंचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुंचे, जहां पे दुख है, जहां पे मातम है, जहां पे खुशी है, हमारा पूरा टीम आपके दुख और सुख में शामिल है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मैं अब से अभी मैंने कहा अब से लेके 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगी और हम प्रोग्राम को बना करके सजा करके लाया हूँ। हम आप लोग के कुछ भजन से अभी कुछ भजन हम आप लोग के सुनाने वाला है, भजन के रूप में भजन ही है। और यहाँ पे आज देखा जाए तो देशदा के मंगलवार हो चुका है, 20 सितंबर हो चुका है 2026 में हम है, और टाइम देखा जाए 8:30 का वक्त है। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे हमारा ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। सुबह का प्रोग्राम है, हर एक को शुभ सुबह हो। हे खुद मोर कईदरीन, आप सब चुन है एफ अग्री लव फहन हिंदुस्तानी रेडियो से चुन है दोस्तों, और हम आप लोग को कुछ भजन सुनाने वाला हूँ, भजन की जैसा है भजन का रूप में है।

तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता भी तुम ही हो। अभी आप सुने थे बहुत ही अच्छा भजन ही, जो भाई या बहन जो इस वक्त में पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ पे हर एक पूजा करने वाले के लिए ये सब भजन हम चलाते हैं और जो प्रोग्राम को सुनते हैं, बस भगवान आपके हर एक मांग को पूरा कर दे और हर एक दुख को दुनिया से मिटा दे, हर एक को तंदुरुस्ती दे, हर एक तंदुरुस्ती दे, हर एक चीज़ से बचा के रखना, बच के जाना, बच के चलना। आप भी इस वक्त जो अपने नौकरी पे जा रहा है, बच के अपना हर एक चीज करना, क्योंकि समय बदल चुका है दोस्तों, और बच के हर एक चीज़ बच के करना। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही भजन की ओर, और देखा जाए भजन के रूप में है, भजन ही है, भजन जैसा भी है।

जी हाँ दोस्तों, तो प्यार का सागर है, हम सुबह हो सुबह का प्रोग्राम है, सुबह में ऐसे ऐसे गाना अच्छे लगते हैं, ये भी एक भजन भी है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलाएंगे, एक दूसरा भजन तैयार होकर मैंने रख दिया है, सजा करके लाया हूँ, आपके कानों तक पहुँचाऊँगा। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मंगलवार हो चुका है, घड़ी की तरफ देखा जाए फैफो पर हल्फ नहीं हो चुका है और 22 तक सितंबर 2026 में हम चल चुके हैं। हर एक को शुभ सुबह हो।

जी हाँ दोस्तों, साझा नाम तेरा। हम चलेंगे और बढ़ेंगे आगे क्योंकि वक्त हम वक्त से जो रहे और हम अपना जो प्रोग्राम बना के लाए हो ढेर ढेर सारा वक्त नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरा अच्छे अच्छे भजन है। चलो हम चलते हैं प्रोग्राम से आगे और एक बहुत ही अच्छा भजन से हम आप लोग के खुश करना चाहता हूँ। सुबह हो चुका है और सुबह में अगर आप ये सब भजने सुनेंगे तो कुछ दूसरा सा मन हो जाएगा, दिल भी दूसरा हो जाएगी, सोच भी दूसरा हो जाएगी।

जी हाँ सुनने वालों, सत्यन शिवम सिंदरम, ये सब भजने सुन के मन खुश हो जाता है, जी उठाता है, जी उठते हैं और कहते हैं ये सब भजन है जो सुन करके खुश हो जाते हैं, मन दिल खुश हो जाते हैं। और ऐसे हम आप लोग के कुछ भजने सुनाने वाले हैं, देखा जाए। हम एक भजन और चलाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ और रिक्लामों की तरफ और फिर हम आपके साथ रहेंगे वादा के मुताबिक। अब से लेकर 12 बजे तक हम आप लोग के साथ रहेंगे।

जी हाँ दोस्तों, देखा ऐसे ऐसे भजन हम आप लोग सुनाने हैं सुबह का प्रोग्राम है। सुबह में ऐसे ऐसे गाने अच्छे लगते ही, ऐसे ऐसे भजन अच्छे लगते हैं। हम आप लोग एक भजन तक और ले चलेंगे, उसके बाद न्यूज़ और रिक्लाम सुनेंगे।

0: जहाँ दोस्तों हर एक जो आज उसका जन्मदिन है और स्पेशल हमारा जो दीदी है सावित्री भोला सिंह का आज जन्मदिन है दोस्तों, और ठीक पूरा पूरा धूमधाम से मनाएंगे वीकेंड में, और हमारा पूरा टीम की तरफ से दीदी के बस हर एक चीज भगवानों के दे, तंदुरुस्ती दे, हसन थे दे, और हर एक खुशी उसके चन्न में रख दे। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे और हम देखते हैं यहाँ से, तो एक गीत हम आप लग के सुनाने वाला हूँ। श्रीराम कलावन की आवाज में
1: है जन्मदिन, है जन्मदिन।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दीदी, सबिती भोला सिंह जन्मदिन पे हो, तुमको बधाई। पूरा टीम फाहुन के और पूरा करो को टीम टेक चांस फार्मेसी आपको मुबारकबाद करती है। आपका जन्मदिन ही 80 साल के हो चुका हमारा दीदी, और खूब धूमधाम से अपना जन्मदिन को मनाएंगे। जो वीकेंड आ रहा है उसका जन्मदिन हमसे मिलाएंगे, मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड की तरफ, न्यू सॉन्ग्स। चलो कुछ न्यू ढंग में है, कुछ न्यू स्टाइल में है। भूल मत जाना आप सब चून है द एफ अगेन लव द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से चून है, जो जहाँ शहर से प्रोग्राम को करते हैं और प्रोग्राम बना करके सजा करके आपके कानों तक आपके घर तक पहुंचाते हैं। बस एक ही को है, वो है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

जंद तो मैं रंग शरबत का तू मीठ घाट का पानी। ठीक है, इसे हम चलेंगे प्रोग्राम को लेके। हम चलते हैं कुछ नए नए सॉन्ग्स है और कुछ डांस वाला सॉन्ग्स भी है, हम मिलके सुनेंगे। और आप सब चुन है दया फगी लाफ द लाफ वाहन हिंदुस्तानी रेडियो, सब सब चुन है दोस्तों। और हमारे हर एक हम हर एक कलेगा हर जो कलेगा हमारा है, हमारा टीम जो है, हर टीम की तरफ से हर एक को अभी सलाम है, राम राम, नमस्कार है। हमारा डायरेक्टर है कुमार गिराऊ, पूरा टीम की तरफ से हम आप सबकी सलाम करते हैं, राम राम करते हैं, नमस्कार भी करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, तू जाने ना, अभी आप सुन रहे थे और हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो सवाल और जवाब है अब आज नहीं रहेगा। हर एक गाने को मांग सकता है, हर एक जो हमारा प्रोग्राम सुनते ही हर एक एक गाने को मांग सकता है, एक फरमाइश मांगता है, जो भी आप चाहते हैं आज मांग सकते हैं। और आने वाले शुक्रवार को हम सवाल और जवाब का प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। हर दिल से यह नाता है, हर दिल से एक रिश्ता है जो बन चुका है, आज भी हमेशा का तरह होगी कुछ प्यारे प्यारे मीठी मीठी ऐप द्वारे बातें, और आप एक गाने को यूज़ कर सकते हैं। मैं हूं अनिल सार, जो आपकी खिदमत में अब से लेकर 12 बजे तक हम आपके साथ देंगे और हम ले चलेंगे आप लोगों के कुछ नए स्टाइल में, नए गाने में। और ये बताना चाहता हूँ, सर 10 बीस आप सब हलफ एलफ से आप सब गाने को मांग सकते हैं, क्वातो फॉर एलफ से 10 बीस से ऐप कर सकते हैं, जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे ऐप कीजिए, हम ज़रूर आपके गाने को पूरा करेंगे। वक्त से हम जुड़े हैं, वक्त हमसे नहीं जुड़े, हम वक्त से जुड़े हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि 12 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ। और हम चलेंगे आगे, कुछ डांस के नगमे हैं।

जी हाँ दोस्तों, या बाबा अभी आप सुन रहे थे। मंगलवार हो चुका है दोस्तों, देखा जाए तो इंटर सितंबर हो चुका है, 2026 में हम चुकल चुके हैं। और जैसा मौसम देखा जाए बाहर, तो मौसम कुछ ठीक नहीं देखा है। चलो आप लोग के मौसम की जैसे मौसम वैसे गाना हम आपको सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सो रहे थे मेरी बाहों में आ। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, कुछ रैगे म्यूजिक है, एक रैगे गाना हम आपको सुनाते हैं और हम सब मिलकर सुनेंगे।

जैसे अभी आप सुन रहे थे रेगे म्यूजिक और न्यू स्टाइल इंडियन बॉलीवुड का नंबर है। चलो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की तरफ और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने ये गाया है, मैं को ही ऐसा गीत गाऊं। चलो हम सुनाते हैं दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, न कोई गीत गाओ, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। हम आप लोग के ले चलते फिर एक बार कभी यादों में आओ, अभिजीत भट्टाचार्य का आवाज है और मूवी तेरे बिना।

0: Infopool op 00597875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Ja, dat is op jou op zo'n recht, hè. Reclame oude nieuws. Ja, dus hem sab chun hai, the fucking love. Fahun Hindustani Radio se hem sab chun hai. जैसे मैंने कहा था 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम फरमाइशें सुनाएंगे, लेकिन सवाल जवाब आज नहीं है, आने वाले शुक्रवार के सवाल और जवाब रहेंगे दोस्तों। जो कितने गाने हैं हम, मैंने कहा था जो भी आप मांगना चाहते हैं, जिसके लिए मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं, वादा करके हम वादा निभाना जानते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो गाने को मांग किया है किसी और के लिए, किसी इसके लिए, आज वही है प्रोग्राम में मेरा कि आप गाना को मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, देखते हैं देहात शहर से रॉय देवराज प्रोग्राम को सुनते हैं और कहते हैं मुन्ना कुछ तो सुना दे मुझे। वो प्रोग्राम को सुनते हैं और कहते हैं अपने तरफ से एक गाना रख दे। ठीक है, हम अपने तरफ से गाने को रखते ही रॉय आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तो चलिए रॉय, ये गाना आपके नाम है और देखा जाए प्यासे दिल मूवी प्यासे दिल नहीं सैफन तक का गाना है, काफी पुराना गाना है और हम आपको सुनाते ही करोड़ों का दिल बहलाने वाला द नाइट मुकेश की आवाज है।

0: चांदनी
1: जी हाँ दोस्तों, तुम महक थी जमा चांदनी हूँ, मूवी प्यासे दिल नेखम जी त्रियंसी फन तक का ये की थे और चला गया था धनाक शहर में, जहाँ से रवि देवराज प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, कहते हैं मुन्ना थैंक्स। जी हाँ रॉय, ये गाना आपके नाम था, मैंने कहा है जो भी गाना मांग सक जो भी फरमाइशें मांगना चाहते, जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, फाहू रेडियो को सुनते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग आज फरमाइश मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सुरीनामों की तरफ। वेलखदक से देखा जाए नबी गुलाम नबी वैक से गीता का श्रीराम प्रोग्राम को सुनते ही, शुभा शुभा प्रोग्राम को सुनते हैं और एक गाने को मांग किया है। देखा जाए मूवी है नूरी, मूवी नूरी है, फारूक शाइक पूनम दियोल और मदनपुरी इसमें काम किया है और देखा जाए जो इसका म्यूजिक जो बजाया है कयाम है और यान नज़ीर इसका हाथ और जो कलम सिहाई चला गया हुआ है चलाया गया है वो है यान नज़ीर। हम आप लोग को सुनाते हैं मूवी नूरी के गाना आ जा रे और नितु मुकेश और लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया है।

जहाँ दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आजा रे ओ दिलबर आजा, मूवी नूरी कहे, फारूक शाइक इसमें काम किया है और पूनम दियोल। ठीक है, यह चला गया था सूरीनाम वेलखदाकज़ई गुलाम नबी वेख, जहाँ से मफरो काशीराम गीता काशीराम प्रोग्राम को सुनते हैं और ये गाने को फरमाइश किया सदा प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को भी देते हैं। आज सवाल जवाब नहीं है, हर एक एक गाना को मांग कर सकते हैं और गीता काशीराम ने भी गाने को मांगा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ गीता के आप प्रोग्राम को सुनते हैं काफ़ी पसंद भी करते हैं, बस बहुत बहुत धन्यवाद हो इसे प्रोग्राम को सुनते रहे ना आप। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से चुने जो दना शहर से प्रोग्राम को करते हैं। चलो दोस्तों ऐसे काफ़ी लोग हैं जो फरमाइश को मांग किया है, हमने चलते हैं तिथि फोकना जहाँ पे सुनीता बुधाई प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, हक बनते हैं, जो लोग प्रोग्राम को सुनते हैं उसे हक बनते हैं आज एक गाने मांगने के लिए। और मांग क्या है देखा जाए, किशोर दा की आवाज़ म्यूजिक, इसका म्यूजिक जो बजा कर सजा करके हम तक पहुँचाए हुए पप्पी लहरी है और प्रकाश मेहरा का लाइरिक से। चलो हम सुनते और ये जाते हैं तितली फोक कनाल जूरी नाम, जहाँ पे सुनीता बुधाई प्रोग्राम को सुनते हैं।

दोस्तों, नकल का पता और बरसों की भी आप सुनते किशोर दा की आवाज। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं फरमाइशी की तरफ। और हम एक बार मैंने कहा था हमारा कराओ को टीम टेक चांस फरमाइशी के, हमारा दीदी जो है सवित्री भोला सिंह जो आज 80 साल का हुआ है, हमारा पूरा टीम जो है काफी लोग है हमारा कराओ को फरमाइशी में, हर एक के तरफ से हम दीदी के एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज उसका 80 साल हो चुका है। और चलो भगवान से ही प्रार्थना करते, ईश्वर से ही मांग करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते कि हमारे दीदी के 100 साल की आयु है, 100 साल हमारा बीच जिए, हमारा बीच में रहे। दीदी तू प्रोग्राम को सुने हैं, हम एक बार फिर से आपको खफिस्तेर करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जाने कौन ची मोहे दीदी, पूरा जो हम लोग के ग्रुप है सब कोई मिल के ये गाना को मांग किया है स्पेशल आपके लिए। अभी एक दो गाना हमारा जो ग्रुप है पूरा टीम ले, अभी हम उसके नाम से और कुछ गाने हैं फरमाइश है। मैंने कहा था जो भी आज गाने को मांगना चाहते मांगिए, जिसके लिए मांगते हो मांग सकते हैं।

जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आज हमारा दीदी सवित्री भोला सिंह का 80वां सालगिरह के उपलक्ष्य पर लोग हमसे फरमाइश मांगते हैं उनके जन्मदिन के, क्योंकि वो हमारा ग्रुप में गाना गाते हैं और कॉनहेयर्स जहाँ पे फ्लैट में वहाँ भाई देवी के साथ गा रहे हैं, जहाँ सांद्रा है और सांद्रा है और हर एक इंदर है, हर एक हुआ भी ग्रुप है वहाँ भी गाते हैं, हर एक मिलकर उसे बधाई बार देते हैं और कहते हैं जो साल की आयु रहे दीदी, बस सदा तंदुरुस्ती रहे। और हमारा बीच में ऐसे नाचते आते, बहुत नाचते हमारा दीदी, खसलख है, बहुत खसलख है हमारा दीदी, बस भगवान तो क्या ऐसे ही खसलख पकड़े। हम लोग के बीच में नाचते रहना, गाते रहना, काफ़ी अच्छे गाते हैं। इसी खुशी पर देखा जाए तो भाई आंद्रे टेक चांस का और हेलिन टेक चांस का हमारे भौजी है, भाई और भौजी बहुत खुश होके हमारे दीदी सवित्री भोला सिंह के लिए इस गाने को मांग किया है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जुड़ रहे थे हमारा भौजी हेलेन और हमारा भाई आंद्रेई रामदिहन सिंह जो हमारे ग्रुप में गाते हैं करो को फरमा से टेक चांस। और आज हमारा बड़ा दीदी, उसका जो फुआ है, फुआ बोलते हैं, आज उसका 80वां साल उपलक्ष पर हम सब कुछ गाने मांग रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ गा रहे। और ये था हेलेन और भाई आंद्रेई जो अपने प्यारे प्यारे फुआ के लिए इस गाने को मांग किया है। सभी दीदी आज प्रोग्राम को सुनते आप खुश है ना, आज आप 80 साल के हो चुका है, भगवान तुम्हें इतनी ही आयु दे, 100 साल हमारे बीच रहे और तंदुरुस्ती मालिक आपको बनाए रखे। कभी कभी कहीं पे खुशी है और कहीं पे गम भी है। आज हम अभी एक गाने को मुझे चलाना है क्योंकि मैंने कहा था जो भी है, जो भी गाने को आज मांगेगा हम पूरा करेंगे। फर्स्ट कोतन से शांता सार्ज कोहाबीर जो प्रोग्राम को सुनते हमेशा, आज भी सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, उसने इस गाने को मांगा है क्योंकि एतवार पास हो चुका है, 20 तारीख था सितंबर के, हमार भी हमारे भाइयों हमारे स्वागरी का ध्यान हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, अम्स्टरडाम के है, वो एक दत्रा थे, पैखपन सुधे थे लेकिन वो गुजर गया, अब इस दुनिया में नहीं है, दूसरे लोक में चला गया है, जहाँ पे वो गया है हर एक वहीं पे जाएगा, लेकिन बारी बारह हम सब वहीं पे जाएंगे। और एक गाने को मांग किया है और वो गाने हम ज़रूर सुनेंगे, मिल करके सुनेंगे, काफ़ी दम है इस गाने में, काफ़ी अच्छे गाने को मांग किया है और हम सब सुनेंगे मिल के। मैंने कहा था कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम है, हम गम कभी नहीं चेंज कर सकते हैं, खुशी में भी नहीं, हम सदा कहते हैं हम, हमारा जो टीम है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है, हमारा पूरा टीम दुख में भी है और सुख में भी शामिल है, हम रेडियो से जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, इसलिए हम लोग ये कहते हैं दुख और सुख में पूरा टीम हमारा आप लोग के साथ है। तो चलिए दोस्तों, शांता फर्स्ट कोते से शांता सर्ज को हबीर जो प्रोग्राम में इस गाने को मांग किया है, हाँ जो हम लोग के भाइनों ही था, दव का ध्यान हो गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए इस गाने को मांग किया है।

0: अब आईना पूछता है मुझसे,
1: किसके लिए भागे थे?
0: मैं चुप रहता हूँ,
1: क्योंकि जिनके लिए भागे थे
0: वो अपने रास्ते चले गए।

जहाँ दोस्तों ये गाना सुन के तो इस गाने में हर एक दर्द है, हर एक सच्चाई है, हर एक तड़प ख्वाहिश उसका जो ज़िंदगी गुजरा है, हर एक इंसान के ज़िंदगी ऐसे कहीं गुजरती है तड़प ख्वाहिश, इका तो खुरी उका तो खुरी इका तो खुरी, घर के राजा को हर एक चीज़ करना पड़ता ही। शांता सार्जु कुहाबीर जो फोर्स कोतन से हमारा बहन है और हमारा फैमिली में एक बड़ा सा घटना हुआ कि हमारा स्वाखर जो इस दुनिया में नहीं है, हम कमला दीदी को और उसका बेटी को बहुत बहुत स्थितवेंस करते हैं, पूरा फैमिली उसे स्थितवेंस करते हैं। और ये भी मांगना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे, जैसे भी रहे, बस खुश रहे, यही दुआ हम मांग सकते हैं। और जैसे भी रहे ठीक से रहे, हम लोगों की भी देखभाल करें, हम लोगों के हर एक चीज़ से जुड़ा हूँ, हम लोगों उनसे भी हम सब जुड़े। और इस गाने को शांता कुहाबीर ने मांगा है, नाम सहेल फैमिली सार्जु एंड शिव गोविंद। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक और घटना घटा था। 13 साल हो चुका है, उत्तराखंड शहर में रहते थे और सुंदर सार्जु है जो हमारा दादा का बेटा था, अब वो उस दुनिया में नहीं, आज जो जीते तब आज 13 साल हो गया इस दुनिया में नहीं है। सूरीनाम देश में काफ़ी बड़ा कलाकार थे, सुभाष ऑर्केस्ट्रा में ये गाने को गाया है, मुकेश का गाना गाते थे, काफ़ी नाम को कमाया है। हॉलैंड में आया तो खुरूप शक्ति में उसने गाना गाया है, जो नदीम खान थे और शेखर कुमार उन लोग के साथ ये भी ग्रुप में गाना को गाया है। सुंदर सार्जु हमारा दादा का बेटा था, अब दुनिया में नहीं है और पूरा फैमिली पूरा सार्जु जो है सूरीनाम में, यहाँ पे हमारे भौजी है, जितना बच्चे है सब कोई उसकी याद में, आज हमारा भाई हर एक दिल में दर्द छोड़ के गया है। इतना प्यार था हम लोग में आपस में, बहुत ही प्यार था, बहुत ही प्यार करते थे हम उनको, हर एक उससे प्यार ही किया है, कभी कोई उसे एक बात नहीं बोला ऊँचे आवाज़ में। सुंदर भाई जहाँ भी रहे, आप खुश रहे और सदा हम लोग के देखते रहिए वहाँ से। और जिस दुनिया में आप हैं उस दुनिया में हम सब आएंगे, हम सब वहीं पे आएंगे, लेकिन बारी बारा हम सब उनकी याद में, मैं भी, हमारा पूरा फैमिली, हमारा पूरा सार्जु जो है मेर सौरख के और दमहियाँ तक लेके इतने नई मेख से भाई क्रिस सार्जु और मंदी भौजी और हर एक इस गाने को मांग के आए, क्योंकि याद से हम जुड़े हैं, दिल में याद छोड़ गए हैं। चलो हम इस गाने सभी कोई सुनेंगे, हम जानते काफ़ी लोग प्रोग्राम को सुनते इस वक्त, अगर हम अपना ऐप पर जाएंगे तो काफ़ी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और दूर दूर से भी सुनते हैं। नाम सही फैमिली सार्जु, सुंदर भाई की याद में हम इस गाने आपको सुनाते हैं।

जी हाँ, हमारे प्यारे सुनने वालों, ये जो गाना मांग किया गया था पूरा फैमिली सार जो इस रेख में नए लान के है, और हर एक बच्चे जो इसे एक लाइन के अंदर हर एक के दिल में जगह बना के चला गया, बहुत सी बड़ा जगह बनाया है और छोड़ के चला गया। आज 13 साल हो गया है और हमारा भाई क्रिस भाई जो नए मेघर से इस गाने को मांग किया है, और मैंने इस गाने को सुनाया दिल से, हमारा दिल में भी हमारा भाई है। अभी आपने गाने में सुना है कहाँ तुम चले गए, यही सवाल मुझसे भी है कहाँ चले गए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वहीं पे हम जाएंगे, एक दिन जरूर मुलाकात होगी, हर एक से ऊपर ज़रूर मुलाकात होगी, जहाँ भी रहे जैसे रहे जिस हाल में भी है हमारा भाई है, बस खुश रहे जहाँ रहे, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, मांग करते हैं भगवान से कि जहाँ भी रहे अच्छा से रहे, बढ़िया से रहे। ठीक है, हम चलते हैं एक गाने और उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ और बयान। और ये गाना मुझे याद है, जसुंदर भाई सुरीनाम आते थे, हम छोटा लड़के थे तो गांव पर आ जाते थे और एक ग्रुप बना करके घर घर पे गाने होते थे, हारमोनियम पे बैठ के सुंदर भाई इस गाने को गाते थे, जो मुझे याद है और काफ़ी अच्छे लग रहे थे वो दिन मुझे याद है। और ये फेवरेट गाना था भाई के, और ये गाना हम अपन तरफ से नाम से लतीम फाहून की तरफ से इस गाने को मैं चला रहा हूँ।

0: जी हाँ दोस्तों, ये था नामंस है लतीम फनफाहोन, और ये सुंदर भाई जो यादें छोड़ के चला गया है, उन यादों में लेकर हम इस गाने को सुनाया है। क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब वो हॉलैंड से आते थे, हम एक छोटा सा थे और ये बैठ के हारमोनियम पे इस गाने को गाते थे, और बहुत ही अच्छा गाते थे, और सदा मुझे पसंद था। उसी को सुन के मैंने कहा मैं भी कभी गाने को गाऊंगा, और वो मैंने किया है। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी जाए, जैसे भी रहे, जिस हाल में रहे, बस खुश रहे, और पूरा फैमिली सारजू और फैमिली लोगों है, हर एक फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देते जो आप लोगों ने इस गाने को मांग किया है। क्रिस भाई और बिश्ना जो है दीदी, ये लोग गाने को मांगा, हमारा बहन है, हमारा भी पूरा भाई बहन ही, हम लोगों दादा काका का है, लड़के हैं, बच्चे हैं, और हम सब भाई की तरह, बहन की तरह बड़ा हुआ हूँ। हर एक फैमिली की तरफ से जहाँ भी रहे खुश रहे। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं, देखा जाए तो हम आप लोग के ले चलेंगे अभी कुछ, देखा जाए न्यूज़ है और कुछ रे हल्लामा रहेगा अभी, देखा जाए हम आप लोग के न्यूज़ और रेखलामा से हम जोर देते हैं, क्योंकि वक्त आ गया है न्यूज़ और रेखलामा की तरफ चलेंगे।
1: वकालतन का तौर आने दराम शुद्ध वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 15 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen en het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland bij zonneschijn de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: जी दोस्तों, अभी आप सो रहे थे न्यूज और रेखलामो. दोस्तों ठीक है, हम चलते हैं क्योंकि वक्त नहीं है. एक घंटा और हमारा तुम्हारा साथ रहेगा. मैंने कहा था ना, 8:30 बजे से 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ है. हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं. एक घंटा और बचा है. ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं. जिसका जन्मदिन है 80वां सालगिरह है हमारा, सवित्री भोला सिंह, जो 80 साल का आज हुआ है और हमारा ग्रुप में गाते हैं. और हर एक हम लोगन एक गाना मान के सुनावे जो कर फफूरी थे, और वो हम लोग के साथ हर दफ़ा आते हैं तो वो गाने को गाते हैं और काफ़ी अच्छे गाते हैं इस गाने को. और देखा जाए मूवी वो गाना फिल्म के दिल अपना और प्रीत पराया नेकंती शस्तक का है. लता मंगेशकर की आवाज़ है, शंकर जय किशन का म्यूज़िक है, और जो हाथ सिहाई कलम चलाया गया है वह शैलेंद्रा का. मीना कुमारी, राज कपूर, ओम प्रकाश इस फिल्म में काम किया है. और गाने का बोल है अजीब दासता. काफ़ी अच्छे गाते हैं हमारा दीदी सवित्री भोला सिंह. 80 साल का हुआ ये गाना. नाम से ही लतीम करो को फरमत सीखे है और आपके नाम.

जी दोस्तों, प्यारी प्यारी दीदी सावित्री भोला सिंह का जो 80 साल के हो चुका है आज, और ये गाना वो खुद ही गाते हैं हमारा टीम में। हम सोचते हमारा पूरा टीम ने कहा है कुछ उसके लिए सुना दे, तो मैंने कहा कि ये गाना तो वो गाते हैं और उसे हम आपके नाम कर दिया था सावित्री दीदी। ऑल द बेस्ट, और हम लोग नामों से ही लतीम करो करके, और हमारा फाहौन जो ही रेडियो की टीम से बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई हो, और खुश रहे, खुश रहो, तंदुरुस्ती रहे, भगवान आपको और सदा ऐसे बनाए रखे कि आप इतना फरू लगाते चले, हम लोग के साथ नाचे है और खूब खसलख करे है। और ये था दीदी आपका प्रोग्राम जो हम लोगों ने सुनाया है, और कुछ गाने जो जन्मदिन के गाने भी आपके नाम हम लोग ने किया है। यहाँ तक था हमारा सावित्री भोला सिंह जो के गाने मैंने सुनाए हैं। अभी हम देख रहे ऐप पे और कोई, हम देखते कौन सा गाना वो लोग मांग किया है। तब तक के लिए हम चलेंगे बरेदा शहर से, जहाँ पे बिश्ना और सोनू प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग भी किया।

आए हमेशा हमारा प्रोग्राम को सुनते ही जैसे मैंने कहा है, आज सवाल जवाब का नहीं है, आप लोग एक गाने मांग सकते हैं। तब देखा जाए मूवी अपनापन, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज अभी आप सुनेंगे, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी का ये लाइरिक्स है, जितेंद्रा रीना रॉय ने इस फिल्म में काम किया है अपनापन, और गाने का बोल है आदमी मुसाफिर।

जी हाँ दोस्तों, ब्रीदा से जहाँ पे बिश्ना और सोनी प्रोग्राम को सुनते हमेशा की तरह आज भी सुनते और पसंद करते इस गाने को मांग किया था मूवी अपना पन। ठीक है, ये गाना मैंने आपके घर तक पहुंचा दिया है दीदी और स्वागर। ठीक है, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही एक बार हम फिर चलाते एक गाने जिसमें तनी से कुछ और खुशी हो जाते ही दिल जग उठते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जिसका जन्मदिन है खुशी और गम है दुनिया में यही है। हम चलेंगे मूवी मीर और मीर्स बचपन। हम और आप समझते ना, बचपन है इस फिल्म का नाम, मीर और मीर्स बचपन। हम गीता दत्त और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ है, मजरूत सुल्तानपुरी का म्यूजिक है और ओमकार प्रसाद नैयर का ये जो लाइरिक्स है

जी हाँ दोस्तों, क्या गाना यार, जिस इस गाने को जो अख्तियार किया है वो ही जॉनी वॉकर, इस गाने को इसमें इसका हाथ है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे, घड़ी की तरफ देखा जाए 11:22 पास हो चुका है, अब काफ़ी वक्त नहीं हमारा तुम्हारा साथ, फिर भी हम चलते हैं। एक फरमाइश आया है जो सुरीनाम पस खरोनेगन शर्मा से, सीता जी प्रोग्राम को हमेशा की तरह आज भी सुनते हैं और एक गाने को मांग किया है, और गाने का बोल है, ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता मंगेशकर की आवाज़, मूवी है दर्द नहीं खनते एन तख्त का, म्यूजिक बजाने वाला है कयाम और लाहिरी साहब जानते नवसात। ठीक है ठीक है, सीताजी आप प्रोग्राम को सुनते हैं एकदम पस खरोनेगन शर्मा से, सुरीनाम से ये गाना हम आपके नाम करते ही क्योंकि आपने इस गाने को फरमाइश किया है।

जी हाँ दोस्तों, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। छूने से ऐसा होता है तो छू सकते हैं ये शर्मका से पोस्खरोनेगा से सीताजी पर गांव को सुनते इस गाने को मांग किया था। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं हमारा प्रोग्राम को फाहन को सुनते ही तो हक बनते ही गाना को मांगने के लिए। और ये मांगा है मूवी दर्द निकलती इन तक तक है और द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। एक गाना है जो लेबार्द से है जहाँ पे भैया शिव गोविंद प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा की तरह सुनते हैं, आज भी सुनते हैं और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए। और अपना जितना फैमिली है सुरीनाम में, जितना हमारा उसका दोस्त है, काफ़ी दोस्तों है वहाँ पे, हम सबके जानते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रुप है वहाँ पे सभी को और सब एक जगह पे इस वक्त है। और मांग किया है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की एक आवाज़ जो काफ़ी अच्छा है, काफी पुराने गाने हैं और हम सब मिलकर सुनेंगे। भूल मत जाना हम सब चून है द एवरग्रीन लव द लव फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, कुछ गलत हो गया है। मैं ये देखता हूँ कि ये गाने तो त्यातक सिकंदर का है भाई, जहाँ से भाइयों से गुण आप सुनते हैं, तो मैं कुछ रखता हूँ जो काफ़ी लंबे है, भूल हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये गाने तो सिर्फ 2 मिनट का है, 20 सिकंदर का है यार। ठीक है, हम ये गाने आपके लिए चलाते हैं।

0: तेरा क्या कहना।
1: जी हाँ दोस्तों, रे वार्ता की तरफ, जहाँ पे भैया से गोविंद प्रोग्राम को सुनते ही और इस गाने को मांग किया था, मूवी तुमसा नहीं देखा, निगम थी जी फिल्म फाइव तक का है, आशा भोसले, पद्मा श्री मोहम्मद रफी का आवाज और ओपे नयन का म्यूजिक और लाइरिक से मजरूत सुल्तानपुरी। फिल्म में काम किया है शमी कपूर और अमिता। ठीक है दोस्तों, हम अब चलेंगे, मैंने कहा था आने वाले फ्रेदा को शुक्रवार को हम फिर से रहेगी और आप जानते शुक्रवार के है सवाल और जवाब प्रोग्राम, सवाल और जवाब। हम सवाल करना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से जितने लोग इस प्रोग्राम को सुनते ध्यान से सुनिए और बढ़िया सुनिए इस सवाल को, अगर इस सवाल पे सही जवाब को दिया, सही हल को दिया, हमेशा की तरह आज भी हक बनते हैं एक गाना मांगने के लिए। आज था फ्री, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हैं गाने को मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सवाल को करेंगे अब, आप ठीक से इस सवाल को सुनिए। हम इस तरफ बैठे हैं, आप उस तरफ बैठे हो, हमारा ऐसे सीधे, हम अपने हाथ आगे करते हैं, हमारा हाथ पे कुछ है, हमार कंती से दूसर चीज, हमार कंती से जो हम देखे लो, जो चीज हम देखे लो तू अपन कंती से ना देखे है, कौन चिबा, जो चीज हम अपने तरफ से देखते हैं कुछ और नजर आते हैं, मेरा हाथ पे है वही चीज, आप देखते हैं उस तरफ से तो और कुछ दिखता है, क्या है वो, एक दफे हिंदुस्तानी मुझसे पूछा बे, हम तो हम ही कंती बैठल बाटे तो हमार वो कंती बैठल बाटे, ऐसे हम तो कहता कि तू हमें ताके, हमार हाथ आगे बा, अपन हाथ पे हम कुछ रख ली बाटी, हम जब देखी लो तो दूसर, हम जब देखी लो तो हमने दूसर चीज देखा है, तू उकंतीस देखे है तो दूसर चीज देखा है, कौन चिबा, हमारा तार का नंबर है न्यू सेस फिर धीरी एन एन धीरी धीरी त्वे। अगर आप इस सवाल को जानते हो, आपके पास जवाब है तो मुझे ऐप कीजिए, मेरा ऐप खुल चुका है, आज से लेकर शुक्रवार तक, सुख तलक तो हमें ऐप कर सके है, जब प्रोग्राम शुरू हो सवाल जवाब का ऐप क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे तरफ से कुछ और देखते हैं, आपके तरफ से कुछ और दिखते हैं, क्या है वो, तब तक के लिए हम चलेंगे, वक्त नहीं है, 20 मिनट और है हमारे पास, हम कुछ गाने चलाएंगे अपनी तरफ से, पूरा टीम की तरफ से आप मिलकर सुनेंगे, देखा जाए हम आप लोग के लेके जा रहे हो देखो नया नई रोशनी, फिल्म नई रोशनी निकन तीन जीवन से अस्तक का है और देखा जाए सुनील दत्त इसमें काम किया है और हम मिलकर सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, तेरी आंख का जो इशारा ना होता, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज सुन रहे थे। नई रोशनी नहीं करती जीफना सस्तक का ये फिल्म है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, सोचते हैं, एक आखिरी फरमाइश हम चलाएंगे और वो भी है ईदन से मफरौ शकुंतला। हमेशा का तरह आज भी प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया है, देखा जाए अगर तुम ना होते तो हम इस गाने को जरूर चलाएंगे। इसका म्यूजिक जो बजाया गया है हृदय बर्मन है, हृदय बर्मन का म्यूजिक है। चलो शकुंतला जी, आपका गाना हम आपको सुनाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं। आपके नाम

जी हाँ दोस्तों, अगर तुम ना होते, लता मंगेशकर की आवाज है और इधन से मफराउ शकुंतला प्रोग्राम को सुनते और जिस गाने को मांग किया था अपने आप के लिए। ठीक है मफराउ शकुंतला, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कहता हूँ। और आप सब जानते हैं, आप सब चुन रहे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैं हूँ अनिल सारजू। जो एक आखिरी गाना हम चलाएंगे दोस्तों, और वो भी है जहाँ खुशी है जहाँ गम है दोनों के लिए, हम एक गाने और चलाएंगे नमस्ते लतीम फाहुन की। उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ की तरफ, हम उसके बाद आपसे फिर से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं दोनों तरफ से खुशी में और गम में भी। काफ़ी गम है दुनिया में, काफ़ी दुख है इस दुनिया में, और काफ़ी खुशी भी है। जहाँ पे गम है जहाँ पे दुख है, ऊपर वाला से ही मांग है हर एक के दुख दूर कर दिया जाए भगवान या अल्लाह ताला, हर एक को बचा के रखना, हर एक के दुख से बचा के रखना। और इस गाने हम इन दोनों तरफ के लिए हम इस गाने को सुनाते हैं, दुख और सुख के

जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम चलाएंगे कुछ और हम चलाएंगे यहाँ से दोस्तों, यहाँ से प्रोग्राम चलेंगे जैसे प्रोग्राम था। फिर मिलेंगे शुक्रवार को।

0: हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेंगे, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेकंती तो इन शस्त्र के, जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं। चलो मिलके सुनते हैं।
1: शिप

जहाँ दोस्तों बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो यह शस्त्र का जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी हाँ दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता नहीं खतिन मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जहाँ दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, मेकर जिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का मेकर जिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काची काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार मालासिला ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा, करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकेटिव का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से।
1: जी दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं करी तो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई हंटिंग ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी में आप लोग के लिए चलते नई हंटिंग वेफन शस्तक में, जोहर महमूद इनकोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइव तक में, आँखियों का नूर है तू।

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, सुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नेगेटिव 5/6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नेगेटिव 5/6 तक में, जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अल्लाह जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एल महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम क्या इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर महमूद इन गोवा ने कितने फैंस शस्तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखेंगे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मिल के सुना, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सबके नाम है दोस्तों।

जाओ दोस्तों, तितली उड़ी उड़ती चली, आप जानते हैं जहाँ पे फूल है वहाँ पे तितली जरूर है। मूवी सूरज निकलती जैसन शस्त्र का है और गायिका है शारदा, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, शैलेंद्र का लाइनिक से। चलो दोस्तों, हम वक्त नहीं, हम आगे चलते हैं, गाने को सुनाते हैं। क्या यही प्यार है मूवी रॉकी नहीं एकदम तख्त का है, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ है और स्टारिंग है संजय दत्त तीना मुनिम, एरदी बर्मन का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का हाथ कलम और जो स्याही चला गया वो आनंद बख्शी है।

इजाजत भी आप सुन रहे थे क्या यही प्यार है, ये न्यू स्टाइल में है लेकिन ओरिजिनल जो क्या यही प्यार है मूवी रॉकी का है, एनन तख्तक के जो फिल्म बना है संजय दत्त ने मुनीम ने उसमें काम किया है, किशोरदा की आवाज थे किशोरदा लता मंगेशकर की आवाज थे। दोस्तों ठीक है हम चलते हैं आशा भोसले की तरफ, हम सब मिलके सुनेंगे ये एक फर्रा सिंह गाना है, हम सब मिलके सुनेंगे आशा भोसले की आवाज़।

दोस्तों, आशा भोसले की आवाज़। ओ दिलबर जानी, तूने कही तो मैंने मानी, ओ दिलबर जानी, आशा भोसले की आवाज़ थी दोस्तों। ठीक है, हम आप लोग को ले चलते हैं नेक नील फैफन सैफन तक में, महबूबा महबूबा रिमिक्स मूवी जोले फैफन नेक नील फैफन सैफन तक का है, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और राखी ने काम किया है। चलो दोस्तों, हम देखते हैं। सिंगर एर दी बिरमन है और म्यूजिक कंपोजर है वो भी एर दी बिरमन है। लाइरिक्स आनंद बख्शी। हम मिलके सुनेंगे

जी हाँ दोस्तों, महबूबा महबूबा रीमेक से न्यू स्टाइल में, लेकिन मूवी सोले का ये गाना है, निखिल जी फेवन सेवन तक का है दोस्तों। ठीक है, हम चलते ही आशा भोसले की तरफ, सुनते ही

जी हाँ दोस्तों, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। अभी आप सुनते आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, देखा जाए न्यू स्टाइल में है और हम मिलके सुनेंगे

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जाने दो मुझे जाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी। अभी आप सुन रहे थे और मैं दोस्तों आशा भोसले का आवाज़ और किशोर कुमार की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। हम यार है तुम्हारा कि यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ। दोस्तों हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में, तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था, लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जो गीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलीला जहाँ देखिए उसे फंसे है ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

आ रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। पप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 66 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, PK Happy Station Far Horn Hindustani Radio, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, मैं सोचता हूँ दुनिया में हर एक इंसान को धोखा जो एक बार होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान धोखा दुनिया में जरूर एक बार खाया होगा। तो अरिजीत बर्मन का सॉन्ग है, राजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना, उन दोनों में एक राजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़का से यहाँ पर फिल्म पेश करते थे। अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था, सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं एक दूसरे अलहदा तरह के फिल्म है। फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में। राजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था।

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाजों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, जी हाँ पागल रखा, पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को, तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया, जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा जाओ किशोरदा से बातचीत करो कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के, तो किशोर कुमार ने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्रा से कहा, जितेंद्रा 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दो। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता है, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ 2 बार हुआ, लेकिन किशोर तो ही माल जैसे तो चाहता है एंकल तो ही माल फिर दर्शन आख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ में आप सुनेंगे।

घंटे तलुक, लगभग एक घंटे तलुक लगातार स्पेशल आपके लिए, स्पेशल फॉर यू चटनी शो का प्रोग्राम आप सुनेंगे, स्पेशल फॉर यू। ये चटनी शो का प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ, मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद से, और त्रिनिदाद से जाऊँगा गयाना, गयाना से सूरीनाम, वहाँ से वापस आ जाऊँगा हॉलैंड देश। और ये शो का प्रोग्राम का शुरुआत करता है आज शाम का, या आज का प्रोग्राम में जो है, शाम हो या रात हो या दिन हो या सुबह हो कोई बात नहीं, हेमलता दीनदयाल, उन्हीं के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

0: हुआ हुआ क्या सुखा मिलेंगे, आपने सुना त्रिनदत या टोबैको का सॉन्ग अभी आपने सुने। अब की बार ट्वेंटी का म्यूजिक रिलीज सुखा मिक्स ऑफिशियल इंजी रूम आप सुनेंगे और वो है त्रिनदत एंड टोबैको से।
1: I know you're not blaming me. Nah.
2: At least it's not my money spent.
1: Yeah, because I made our money.
3: You can call somebody.
1: You see me trying to get a signal.
3: Oh gosh, well, you could ask for a ride or something.
4: Who you want to ask? Who? I can get a ride, please.
5: Only one rider. Come now, man. Are you good now?

ग्रीनलाइट म्यूजिक रिलीज सोका मिक्स सभी आपने सुना। अब की बार वेस्ट इंडियन चटनी म्यूजिक आप सुनेंगे लाइव रिमिक्स बाय मुरई भौजी, और गाना का बोल है मुरई भौजी होना चाहिए। और हिमलता दीनदयाल वंस अगेन प्रोग्राम में

0: wanneer de zon je wekt in de ochtend, het licht je doet stralen.
1: जब सोका और मेरेंगे के बात होता है तो सुंदर पोपो को कभी मत भूलना चाहिए दोस्तों. द किंग ऑफ कैलिप्सो त्रिनिदाद टोबैगो का सुंदर पोपो के आवाज में आप एक कैलिप्सो सुनेंगे.

ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का अभी चटनी आपने सुना, और वो था द किंग ऑफ सोका मिस्टर सुंदर पोपो के आवाज में। आपकी बार मैं चला जाता हूँ ट्रिनिडाड टोबैगो छोड़कर गायना कोर दोस्तों, वहाँ पर भी बहुत चटनी सोका लोग गाया है। और रशिका दीनदयाल तैयार हो गया है चटनी ऑन द बीच।

Hai hai, chilam chilam sigaretwana mange and now chutney darya more laila. गायना का चटनी सो का सॉन्ग आप सुनेंगे।

0: आशनी माता दिन के बाद दोस्तों हम चला जाते हो आपन बैठक चटनी स्टाइल। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्रिस राम खेलावन के आवाज में
1: तोरी अखिया हो और पति।

मिस्टर क्रिस राम खेलावन की आवाज में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ हॉलैंडेस, द ईगल बॉबलिंग हिट आप सुनेंगे। डीजी विदेश, हर तरफ तेरी जलवा।

तेरी जलवा हर तरफ तेरी जलवा के बाद दोस्तों जानते जहां सोको मेरेंगे चलता है वहां भी बिगी पोको चाहिए तो आई वन एसबोम ये सरनाम जिस मेरे गांव में रहता है दोस्तों रहता था तो उन्हीं की आवाज में आप सुनेंगे बिगी स्मार्ट स्टोरी।

द मैरी मैन विद बिग बाम्बू, आपको याद है दोस्तों, बीते हुए दिनों में सुनाम देश में जब कैरमस लगता था करम कॉम्प्लेक्स पर, तो वहाँ लोग जाकर रे में खड़ा होकर टिकट खरीदते थे। सुंदर पोपो आते थे, त्रिनिदाद टोबैगो से आते थे गवैया, और ये गीत हमेशा कैरमस पे गाया जाता था, द बिग बाम्बू, हम सब मिलकर सुनेंगे।

बिग बाम्बू द मैरी मैन की आवाज में भी आपने सुना। तो सबकी बार हम चला जाते हैं सुरनाम देश, और सुरनाम देश के कौन गवैया है, मिस्टर रोमियो दंग कमला कॉम लेट वी गो।

Hi, hi, Kamli, come, let me go. Nobody like to go. अब की बार आशनी माता दिन. अपन आशनी है दोस्तों हॉलैंडेस का और आशनी फरमाएगा तोरे बंगले आशनी माता दिन के आवाज में.

आशनी माता दिन नजर लागे तेरे बंगले पर। दोस्तों हमाम स्टोरीज, हमाम स्टोरीज ब्रदर लिव्ड, क्या फरमाएंगे खुद सुनिए।

0: नवा राय
1: राय नवा राय नवा राय एक्सक्लूसिव वॉल्यूम 14 लाठी ना टूटे फसील के आवाज में
2: सुनिए रे हेंड्रिक्स चूज़ वा

है, ऐसा ना हो कि लाठी टूट जाए और सांप न मरे तो क्या होगा दोस्तों? सांप आपको लपेट लेंगे। नो मर्सी चटनी मैच

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ चटनी सॉन्ग, तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

हमारे यारों आम सबको राम राम नमस्कार प्यार भई राम सत श्री अकाल। आज है मंगलवार 20 सितंबर 5 बजे हम इस प्रोग्राम को ऑफर लेते हैं। आज सुबह से भैया अनिल सरजू के प्रोग्राम आप लोग सुने हैं। बीबी साहेब रहीम बख्श आज अफेसक थे, कल इनके परिवार में कुछ दुख थे दोस्तों, और यहां से हम प्रोग्राम को लेंगे 6 बजे तक। कुछ मिली जुली गीत आपको सुनाएंगे और यानी कि 6 बजे से अपना देश और विदेश के समाचार को हम सुनाएंगे। तो यारो देखा जाए आपको हम नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग सुनाते हैं, और ये कौन सा गीत है, मौफी का नाम है, यानी कि एक मस्त भरी गीत है, अभी आप लोग को बताएंगे और आगे इस गीत के बारे में।

और तेरी मेरी बीच में कैसा है ये बंधन, तो ये अनजाना है कमल हसन रति अग्निहोत्री का, ये मूवी एल्बम हैगा नचिकेता लता जी का, ये सॉन्ग है एक और हो जाए।

door movie. Ik doe je kleren van 1981. ये सॉन्ग है एक और चलते है यार नहीं खतक का अलका यांगनी कुमार शानू उदित नारायण का ये गीत है जो आपको जरूर पसंद होगा।

और चेहरा तो क्या देखियो भैया, दिल में उतरियो तब उसका मजा आपको और मिलेगा। कायांगनी कुमार चानू।

और देखा है, क्या देखा है, क्या देखा है, साजन के प्यार देखा है, और कहां देखा है, आंखों में जाकर देखा है, और देखा है तो और आगे क्या देखेंगे। नाइटिंगेल लता जी पर माशिर मोहम्मद रफी का एक और सॉन्ग हो जाए, तेरे नीले नीले आंखों की।

एंड दोस्तों एंजॉय द एवरग्रीन मेलोडीज फ्रॉम आए दिन बहार के 1961-66 और दैट इज द स्पेशल सॉन्ग फ्रॉम आशा परेख एंड धर्मेंद्र का सॉन्ग है हमारी यारो। और आज है मंगलवार है, इस वक्त हम रेडियो पे है 23 सितंबर हो चुका है 2020 मंगलवार है, घड़ी की ओर देखा जाए 20 मरीतन फोर से अभी 6 बजे हम अपना देश और विदेश के समाचार लाइव यहां से प्रस्तुत करेंगे। तब लेक आप लोग कुछ मिली जुली गीतों से और को लूट ये रंगत तेरी सूरत से, रंगत तेरे सूरत फ्रॉम द फिल्म तुमसे अच्छा कौन है फॉर 1969 रंगत तेरी सूरत इन फुल सोलफुल रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग बाय द गोल्डन वॉइस ऑफ नाइटिंगेल लता मंगेशकर एंड पद्मश्री मोहम्मद रफी वाइद हसरत जयपुरी हार्टफील दोस्तों आओ सुना जाए।

और दोस्तों जोंग जोंग जोंग मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है 1969 रंगत तेरी सूरत से इस रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग बाय द गोल्डन वॉइस ऑफ नाइटिंगेल लता मंगेशकर एंड पद्मश्री मोहम्मद रफी वाइट हसरत जयपुर जोंग द हिट्स। उसके बाद हम चलते हैं मूवी का नाम है वक्त 1965 का एक सुपर हिट सॉन्ग है जो पद्मश्री रफी जी का यानी कि रफी जी का सॉन्ग है और सुना जाए।

और ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझको मालूम नहीं है कि आप कितना हसीन है, और तुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी हम कितना जवान है। ये तो बातचीत हो रहा है और ये बात तो दो प्यार करने वालों के लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं। आप यहाँ आए और जॉनी के पास किस लिए गीत सुनने को, आप यहां आए किस लिए? और दादा किशोर जी का ये सॉन्ग है, आशा भोसले का ये गाना है, हिंदी मूवी सॉन्ग। तो दोस्तों, किशोर दादा आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है कल आज और कल। 97.1 का ये प्यार भरी मस्त भरी सॉन्ग है, जिबर हिट सॉन्ग।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की ना कोई बात है,
0: अजी देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: जाती हो?
1: हो जाती आजादी है?
0: नहीं नहीं
1: दादा,
0: सुनो तो
1: दादा,
0: ना सुनो तो
1: दादा,
0: सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: और आपको मुस्कुराने की तो बात है दोस्तों, और ये गीत एक बेमिसाल गीत है किशोर दादा आशा जी का, और हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। वो है, वो क्या है आप खुद ही सुनिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है, क्यों छा जाती है, जो किसी को प्यार आ जाते हैं।

और चेहरे पे खुशी छा जाती है तो क्या ना क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों एक गीत और हो जाए।

और दिन है बाहर की और लाखों गम संसार के और आ जाना। तो दोस्तों अभी आपको हम ले चलेंगे अपनी श्रीनामी न्यूज की ओर।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। एक बार फिर कहते हैं तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी अलाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज भी आपको हम देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम तुरंत शुरू करते हैं दोस्तों, तुरंत शुरू करते हैं। और हम जानते हैं सूरीनाम के, और हमारा नानी नाना सूरीनाम में आप लोग जानो भैया बहुत जबर अरेडिंग हुए है। आदमी दारू पी को तो चलावे है, स्त्रों पाल काट देवे, बोले बिच्चे रास्ता में स्त्रों पलवा आई गे रहा, बक्यू नसार रहा तो के देखा तरा ईबीएस के पलवा डमुआ पे आई गई तो कांति में रहे। और ऐसे ऐसे आदमी वो तो बहुत जोर चलावे हुआ भैया, बिना रेप वैस के चलावे तो चिराग ना बरे है। तो ई करे तो भाई जबरदस्त हुआ पे फरकेस कंट्रोल भइल है नानी इंटेंसिव फरकेस कंट्रोल भइल है जहां पे ना एगो दुई गो भैया बीते हुए हफ्ता में सवन गो फरकेस ओवर ट्रेडिंग भइल है सवन वो तो पकड़ाने भैया ओवर ट्रेडिंग भइल है फरकेस रिहर्सल के बारे में। और ई चीज जो फरकेस कंट्रोल भैले आफू बाका वैक पे भैले, कैनेडी वैक पे भैले, क्राका वैक पे भैले, इंदिरा गांधी वैक पे भैले, अन आइट्स प्लेसिंग फॉर एन अंतल ओवर ट्रेडिंग पर लोकासी ऑफ ना सोर्ट इज नी बकेन खमा सबर फरकेस कंट्रोल करी से स्नेल हेट कंट्रोल करी से गा। और बताए गए हैगा बदूलिंग इज ऑफ द फेलहेट ऑफ द वीगन बिन हेट वेरा खबीत द फर क्रोटन एंड एन अंतल फरकेस ओवर दिए तुरुक्त ड्रिंगन। तो हमारे भैया लोन भी हमारा कितना पकड़ान है भाई, लोन बड़ी ढेर पकड़ान है। तो हम जाए भैया एक आदमी भैया बीते हुए हफ्ता में हाना सुलेस में एक होटल आनाना, और ये आदमिया के होटल के आगे तरी हवा गई लेवे सोना के केती पहिर के नानी। 4:30 बजे सवेरे नख फन सोंदा एन मांदा फिर देर तक उर फोर हेड खबाओ और वो खड़ा रहा हुआ जाए के। और बोले हैगा उत्तरे में एगो आदमी ओके ओके होटलवा के अगवे पिस्टोल दिखाई के ओकर सोना के केती सब ओके रूफ करके चल गए भैया। एगो निघनन चुन तक यार खमान होटल इन ओम खीफ फन हाना सुलेस में रहा, और जो रहा पिस्टोल दिखाई के ओकर केती फेती ले के चल गए नानी। तो सूरीनाम में होटल ओक आगे चुके का बोले हैगा अने फैलख ना है फर दाख्त बदरेख द पिस्तौल लेके और ओकर सोना के केती इंदिरा गांधी बैग में लेके भाग गए है नियोक्रोन के सिपाही एकर बारे में अब ऑन द सुख करे है। सूरीनाम में हम लोग जाए भैया फकांसी से तो हम खड़ी खाली पहिर के जाए ला नानी, ऊपर से सस्ता वाला भैया वन हुआ पे तू दुबलई के चीज पहन के चलियो डब्बे बच जइयो। वन चोरवन परसी जाने कौन ब्रासिलिया के खौत है, कौन असली खौत है, कौन दुबलई है, तो उस सब जो असली सोना है तो हाथ गोड़ मसे यानी घटाई मसे सब नोच नाच के। और सूरीनाम में तरा चोरन लुटेरन है नानी कि केती फेती ले चल जी। एक मारे पन भौजी लोग के बोली ले जइयो लावा आवा भूजे मौसी लोन फुआ लोन दीदिया लोन बप्पा मैया के फरियारी में जइयो, तो गुड़िया उड़िया पहिर के जइयो ना जइयो सोना पहिर के चमकावे, नहीं खाली तू चोर बोलावे।

और जहाँ मिठाई हुआ चूटी जूटी, तो यहाँ पे बता जहाँ सोना है सना में हुआ चोर घुसी भैया। अब देखो एगो घर तुरान है, दुई मिला पकड़ान है भाई, दुई मिला पकड़ान है, और इस सब कौची ले के भैया घर के जितना अपराध रहा सब ले के। अरे सोच नानी, अपराध जितना रहा साइड कॉफी अपराध हो जितना रहा मार ओक सेल्फ टेकल्स और एगो दूष करांग भी लेके चल गया। और जो और न देखियो भैया तो शोकोलाद रहा हुआ शोकोलाद वो चोरा ले गए हैगा दुई मिला भैया दुई हिंदुस्तानी के मोड़ी हम यहाँ देखिए लाडस नकली कफड़िए चोरावे भैया हिंदुस्तानी भी चोरावे है। यहाँ बताए गए सेल्फ शोकोलाद सैंडबैट खमाग बैठे दीप स्टालन और ये बोमा पोलर के बात है सीरी द्री वनिका में दुई मानस आन खाउदन पकड़ाई गए नतुल मैत दखसलोतन खुद से नोख नीत रिखफोन। तो यहाँ बतावे सांतो बोमा के सिपाही सबके लिए गए हैं और पकड़ के बंद करी से यहाँ बतावे हैं वेखनूम स्पेलस एन बोर मशीन स्क्यूर मशीन Delfs hoppen en een broskotter tot een stofzuiger en een ventilator, douchekraan, tegels en chocolade zijn verdwenen uit de woning. तो ये सब बात है नानी सूरीनाम देश के इतना जबर सब हुआ चोरी चोरी चपाटी करे है। यहाँ पे लिखल भैया सूरीनाम के बोले अख्तर खसलोतन दूरन शैलन फरहालन दी व फाक नित सीन कवाड़ी के भीतर में घर के भीतर में जोन कवाड़ी बन होकर पांचे बड़ी बड़ी बात हुए है जोन हम लोग ना जान पाएला है तिस रोड नहीं कर यू रात के बात है ऑन द स्टेनिंग फन स्टिकिंग अमर फिते ही तरह केरना ने बांसेस बोले अलग दाखित एरोप 9 बजे सवेरे गए है और बोले फुटसल पकड़ ले के भैया 50 खसेने कैसे बन हुआ खाई बाटी से ढंग से अनुनाम अनोनीम स्पॉन्सर दी बस लो से फरियार द खोपन अंदर मनीर द फिरन बोरे ऐसे फाकर में से दिन ग्रोत ऑफ ऑन्स डून ऑन प्रोजेक्टर आउट द फोन फन आउट फन वीक आउट लोपेंड द रीजनन तो सूरीनाम अख्तर द देर अदमीलों बहुत दुख काटे भैया त चाउर और बहुत बहुत चीज हुआ दिखाई दे से और बड़े फॉल्तरान बैर अंदर खसीन ते भैया जोन इतरा जनता के मदद करी से रेडियो फाहुन के तमाम टीम के ओर से आपको हृदय से धन्यवाद है कि अपना फरियारी ना डुक्सा दारू सिरकल ले भाई जाई के गरीब दुखिया के तू भोजन खाई देले बाटे। तो ये बात है हमारे नानी और दोस्तों देश में इतना प्रॉब्लम है लेकिन हमारा प्रेसिडेंट सीमन गैल भैया फेयन टॉप इन न्यूयॉर्क में गैल है फेयन टॉप में जेनिफर सीमन 20 सितंबर के और वो गैल हैगा न्यूयॉर्क में या लक्ष्य बहन कौन फन वेरल्ड रेजर्स फिंट फन 21 सितंबर बोलेगा प्लाट्स ऑन है टीमा फॉर ट्रावन हेस्टेलन द ट्रांसिट्सी बहेरन अनफेयन दी रिजल्टात लीवर फॉर ईदर एन। तो हम लोग के प्रेसिडेंट गैल है न्यूयॉर्क नानी तो हम बोली बता दे ऐसे बतिया है ना घूमे गैल है फेन के यानी कि वहाँ पे बेन कॉम्स में गैल है हमारे यारो हमारे दोस्तों हमारे मौसी हमारे मौसा और हमारे हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के और नीदरलैंड के। अब देखो भैया एगो इंस्पेक्टर के साथ का भेल है नानी इंस्पेक्टर के साथ का भेल है इंस्पेक्टर के सभन ऑन सलाह दे से तो बोलिए का करी से जोनिया जोनिया इंस्पेक्टर वा का करी से भैया इंस्पेक्टर वा हैगा
korpspolitie Suriname ke ek voorlopig buiten functie se van kan sê bole na een klag ki i bhaiya recruitment wie hy tijdens sa stage periode a relatie so hebben gehad op een stage na een klag van een recruit met wie hij tijdens haar stageperiode in relatie zou hebben gehad. De korpsleiding heeft de maatregelen genomen in de afwachting van verder onderzoek. De ikke stagiaire kiezen heeft, bole hij gaan ikke verhouding raan. Of bole hij de jagra beëindigd en ook jagra bij de conflict tussen inspecteur en de recruit zijn ontstaan. De vrouw wendde zich vervolgens tot de autoriteiten en maakt melding van de situatie. De ikkerbare met nalies kan is inspecteur wat op per he de ontslag bij zich afgelopen mensen. Politieonderzoek was zich precies tussen beiden heeft afgespeeld en of tijdens de stagiairperiode sprake is geweest van overtreding binnen de dienst. Hangen dat onderzoek is inspecteur voorlopig thuisgezet. Opbole Hega, ja wat we Hega medische heeft laten onderzoeken bij de dermatologische dienst. Uit dat onderzoek zou volgens haar zijn gebleken. Kibolo besmet raas zoals hij ja, inspecteur zou op zijn beurt hebben gesteld. Dat juist de recruit verantwoordelijk is voor een mogelijke besmetting. Vooralsnog is niet vastgesteld. De is op seksuele tjitskere bhaiya Suriname met soa wa bahudheer he. Kondom pando paher kena jayyo bhaiya te ehi sabba bawaal hoi. Ab deko bhai Rishi tussen vrienden. Tijdens auto red mond uit een misaanval is op auto rit kret raam. Oei me auto uwe me bhaiya kaan bole hai gaan. Ane is op ke jhagra bhail hai mond Rishi bhele diskusi bhele. Itra escaleer hoi ge usap ke mens Rishi ki Martin Luther King's Hof me isap churi ke bhoka uwal kalli se bhaiya ego ene daar tak yaar ke anmi ek mila ke chati me bhok dee se uspataal me paral hai o bole hai slachtoffer en verdachter waren samen met twee per andere personen ego voertuig me raad jongs op ghare jat raha o tijdens de rit ontstond oneenigheid nadat de bestuurder ervoor had gekozen via de Martin Luther's weg te rijden het slachtoffer zou hebben aangegeven dat een andere route beter was omdat dat hij vermoedde dat er op weg een verkeerscontrole werd gehouden. De discussie liep vervolgens uit de hand. Het voertuig stopte ter hoogte van een warenhuis, waarna de woordenwisseling buiten werd voorgezet. Tijdens de confrontatie zouden verdachten met een tjuri en de bakkouwel huike bhaai te isep chota chota chich gaat in adminoon. Auro jaike tjuri bakkouwel kallewe henani ye sep maathwe he. SWM के बांध हुए भैया वाटर लाइडिंग के पानी के बांचित हुए हैं वाटर लाइडिंग के बांचित हुए हमारी नानी बोले दूश बर्ड का 80 लीटर कॉस्टन SWM वेस ऑफ फॉरबॉर्गन वाटर लेकन पानी कहीं लेक होए भैया SWM तो तोके चाहिए सब भरे के यहां बतावे है जब तुझे ये नहाए तो बोले सेफन तक तक लाख तक तक लीटर तो के वाटर कॉस्ट हो जाएगा एगो है सौदन में मेरे 5 पर्सोनन लोग देर फरब्रेक दारदोर स्नेल ओप बोले एगो हल्फी के वाश मशीन एगो लेखाचे अंदर बेतन ऑफ इन अ मिरन कुन एर फॉर सॉर्गन दैट अ गसिन फील मेर वाटर गब्रुक एंड बताल दन वर्ड फॉर मूड कहीं काशे जमीन के नीचे में कहीं तू ना जान पाई बकी मेरी तरवा दोरो जा है एकर वारे में वाटर लाइन मास का पै बोले है कि 5 मिला के तक तक लीटर तो के लग जाए पानी भैया नहाई के फोकस हर का बसेत अपन हाउस होल्डन फॉर 4 पर्सन विद अ मंथली से फॉरब्रेक फॉर 60 क्यूबिक मीटर अब बोले है गा स्ट्रक्चरल 30 क्यूबिक मीटर आउटकम जहां पे तो के 30 क्यूबिक मीटर आउटकम अब बोले है गा इसे verstandig na te gaan waar het verschil ontstaan जहां पे तो के 16 क्यूबिक मीटर gebruik के बोले हुआ तो 30 क्यूबिक मीटर पानी gebruik करे है नहीं ये स्ट्रोम फॉल्स ग्रोन फेट ongeveer 8
en een half liter water per minuut uit de kraan. Door de douchetijd terug te brengen tot ongeveer 4 minuten kan een huishouden de Isse Band SWM bole he. Maar SWM i Batiana bole he. Ki usambina meter check le paisa mare he. Paisa maar de wenani. Ortu je yet hua hajaran se paisa barie. De klant open ze SWM bole. Krant is verantwoordelijk voor de installatie vanaf de meter tot aan de woning en moet voor werkzaamheden een erkende installateur inschakelen. Het leidingdeel vanaf de straat tot en met meter valt onder de verantwoordelijkheid van de SWM. Ja, ze meter, ook dame, hoe ook er verantwoordelijk is, ook er bitter met jontje is. Uto verantwoordelijke bhaiya apnon jano hai Leo Brunswijk ke to Leo Brunswijk ke jon hum log ke Brunswijk okar bhai hai ga bhaiya ABS ke director hai aur ABS ke director apan auto leke gaile ek ba ego football veld raha je ka naam ba Gorom Follow Street mein aur auto dhar ke ye namiya chal ke football lage parkir karke और अपन तास ओई में छोड़ दे से ओकर बफाई लेकिन गईले ओतुआ में कुछ निकार के लाई से बोले बे तसवा रहा और लौट के जे गईले ब्रिंसवेई के बे भाई लियो ब्रिंसवेई त ओकर ओतो में से देखे ओकर पाछे के कवाड़ी एगो खिरचे पे लुकन टांगल है और ओकर तास ना है भैया बोलेगा आप सो फुटबॉल फील्ड हाथ का परकेर और ओकर बफाई लग गईल है हमसे मोबाइल टेलीफोन एड toe te halen. Op dat moment leek alles nog in orde en werd niet verdacht. Gemerkt, bolle na afloop van een voetbalactiviteit liep de directeur terug naar zijn voertuig. Daar zag hij een van de achterpoort die niet volledig gesloten was. Oh, hoe was hij? 4000 euro, dollar, dat is waar mij raar. 176.000 SRD और opmerkelijk ook een pistool भी ओमा रहा पिस्तौल वाला चोरी भले पैसा चोरी हुई के चल गए भैया द पुलिस हैव द आर्काइव्ड खनान तो तू ऑटो में इतना ढेर पैसा लेके चले भैया डायरेक्टर हैगा एबीएस के दैट माखिल मान लीट में से यहां पे बड़का बड़का आदमी लोग के जेबी में काली क्रेडिट कार्ड रे भैया कभी पैसा ले कुछ चलवे ना करे बाकी उसे कुछ जर पैसा भैया तो कहां तू लेके चलियो भाई तो ऑटो में धरे रात इतना पैसा ओकर ओकर चोरी हुई है भाई तो ऐसे बतिया है हमारे प्यारी प्यारी नानी लोन श्रीनाम के न्यूज से भाई तो हम बोली आप लोग को बता दे एक बहुत बड़का और लोक तैयार फिन हुई है भैया बिया सऊदी अरबिया में ई चीज भइल है सऊदी अरबिया में बहुत जबरदस्त यानी कि यमन से हुतुस जाय के और दागी से और उस सब एगो ड्रोन भी दागी से गए जो मक्का है जहां पे अल्लाह के घर सब बोले हैं अल्लाह के घर पे जाय के दागी से भैया ये बात हैगा यानी कि सऊदी अरबिया में और ये तो इतना बड़का हुआ अब का भइले सऊदी अरबिया में अभी हुतुस जो है हुतुस कौन च करे है हुतुस रे बेला हैगा यमन के और ई सब है सऊदी अरबिया में भैया यहां बतावे गए हैं द स्पैनिंग टू द सऊदी अरबिया एंड हुतुस रिबेल इन येमन सेन इन सितंबर opnieuw hevig geëscaleerd na een nieuwe reeks aanvallen op de Marsen. Toen ja, wat hij gij he, Turkije, Oro Yaniki, Saudi-Arabië, Oro Yaniki, Pakistan, ze hebben een soort NATO-teken kalera ke hamar des me je probleem hoi, ta hem lo milke ose ladak hoi, ab Saudi-Arabië ko per itra badka duk he, or ze hebben Yemen ke हुतुस रे बेले जाय के कितना जगह एगो एगो पड़का तेल के पाइप लाइनिंग भी दाग दे से और जो जो कोनिंग हैगा और सऊदी अरबिया के अब इधर उधर मदद खोजे भैया यहां बताए गए है Hutu aanvallen, de Hutu rebellen voerden raketten, drone aanvallen uit de diep in Saudi-Arabië aankwamen onder meer bij de hoofdstad Riyadh en nabij de kritieke infrastructuur sluiten.
Uit voorzorg is onder meer een belangrijke oliepijpleiding naar de Rode Zee tijdelijk afgesloten na eerdere sabotage en dreigingen. Mensen op de vluchtelingen door de opleving van de gevechten in Jemen en de wederzijdse bombardementen zijn Hadjaren en wie vlug zijn op de vlucht, mensen. Ja, wat aanwege achtergrond van de conflict tegen proxyoorlog en conflict in Jemen geldt al sinds 2015 als een slepende proxyoorlog tussen regionale grootmacht Saudi-Arabië, steunen aan de erkende Jemenische regering en Iran, steunen aan de Hutus. Iran Kabul rebellen groepen Kabul ondersteunt krijgen. De aanvallen raken ook de internationale scheepvaart in de Rode Zee en start van de Bab al-Mandab, wat zorgt voor grote economische en een politieke zorgen, mensen. Internationale rechtbollen Amnesty International bollen Amerika herhaaldelijk gewaarschuwd voor de minste humanitaire crisis schenden van de internationale recht door alle strijd van de partijen in Jemen, mensen. Toen je maand Jemen keer. Ye orlog kab dono bhaiya ego abbe ego yani ki na don hove a dusra orlog shuru ho jaye ma yaro andhi ka bole hai andhi ke kranti mein likhal hai nu ook dreigende escalatie tussen de Hutus in Saudi-Arabië. Wat zit er achter? Ha. Bole hai ga Hutu rebellen Jemen mein bole hai Saudische hoofdstad Riyadh mein aanval karisega drone se raketen se. Zelf ego drones hebben een makkap en dagi sega maar afweersysteem yani ki Allah ke jo ghar hai wahan pe Allah ke darbar jo hai makka oke bacha le ise dosto we zijn de Hutus ook alweer en waarom hebben ze ruzie met de machtige buurman Saudi-Arabië bole hai er was een tijdje betrekking rustig in Jemen, maar een bliksemaanval van de Hutus maakte dat vorige week een einde aan de rebellen veroverde de eerste belangrijke haven Mokka. Op de regeringstroepen daarna namen ze een eilandje in de straat van Bab el-Mandeb. Ook is een lille zei Jemen, we mezelf mensen. Op buurlandje de Saudi-Arabië een bond genoten van de Jemense regering. Het regerende raketten op de Hutus die spreken van meer dan 700 aanvallen. Gisteren sloegen de rebellen terug en bestookten de Saudische hoofdstad Riyadh met raketten. De ikerbare me op deko Pakistan help kareki nakere he. Bakkie i probleem hoe hij gaat. Hutus 2014 mee. Sana in namen begonnen de Saudis met verenigende bombardementen. Die leverden nauwelijks iets op. Baabki de kojaike. Tjahle buitale bhaiya in dam. Saudi-Arabië in de chatie pe, hamare janta, op het eigen 73 gewonden bij Hutus aanvallen op Saudi-Arabië. Toen janta, jaise Saudi-Arabië ki nieuws aange, aapko hum batate hi rahenge, maar het is heel erg mensen, we gaan al teel hum log ke itra mahangaige bhaiya. Itra mahangaige hum yahan trim maag leger baas in Groenland bouwen na deal met Denemarken en Groenland. Dus toen jane trim bhi matra Groenland lewe, maar met overleg met Denemarken mag je ook een leger basis jij ke Groenland mee dhare ke tabole na li deswa. To ye maante Groenland mee aur jahan trim gaile bhaiya Iran mee aur log bhaile udhar abbe donna bhale Ruslan Ukraine se Iran Amerika se ab yahan shuru hui ke Saudi Arabia se aur Hutu se aur abbe ka aur hui bhaiya ab dekho Turk hai help karega Saudi Arabia ke kina help kare hai to jaise samachar rahega वैसे बताना हमारा काम है नानी जोनी के काम है बताने के लिए तो हम एक गीत की ओर जाते हैं

0: अपने जाओ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों बैठे खाएंगे। हाँ
2: चिराग जी, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ, ले जाओ।

0: केली जो खड़ी हो हमारा इंतजार हो रहा है, जरा इधर तो आओ।
1: कहाँ जाए जाने मन, मेरे पास तो आओ।
2: जलील, तुझे मालूम नहीं शरीफ लड़कियों से कैसे बात की जाती है?
3: और जो भी है बस यही एक फल है, हमारी जनता, हमारी दोस्तों। तो एक दो और समाचार हम आपको सुनाएंगे, उसके बाद में हम खत्म करेंगे। हम चलते हैं उक्रेन को। भैया उक्रेन का प्रेसिडेंट आप लोग जाने हैगा, और है सेलेंस्की। सेलेंस्की का बोले है, सेलेंस्की रूप यूरोपा के बोले है कि जो रूसी से मिलिया देर सेगा, बोले जो रूसलान के मिलिया देर सेगा, बोले ओके, बोले हैगा नीट फंड सांसिलाइस्ट हालन, बोले उस सब के सांसिलाइस्ट पे थल्ले रहिए, बोले दैट हीफ्ट है देश तक में डाक अब देश तक में डाक खदान हर खात ऑन द रूसी से उस बेग से मिलिया देर उस मानोव एंड रूसी से मिलिया देर माइक माइकल फ्रीडमैन के फ्रैंक विल दिस ट्वी फ्रैंक विल द ट्वी फ्रॉम द लिस्ट हालन लेटलैंड विल दैट नीड आज द लिस्ट स्टार्ट नीड फॉर द मिडनाइट tot overeenstemming komen vervallen alle EU-sancties tegen de 3000 Rusland aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zolang deze oorlog voortduurt, moeten die namen op de sancties-lijst blijven staan, schrijft Zelensky. Ik erbaar mee bolle he janta. Sat saad hem chalte bhaiya aap log jano hai. बीते हुए दिनों में जबरदस्त ओवरफॉल भैला, चोरी भैला, और यहाँ पे बतावेगा शुक्रवार के फाइव फरदख्तन से वीर आनखाउदन ओवर ओवर अन लोपंड अंडरसुक रोफ ओवरफॉल भैला फ्रीडस ऑफ वेग पे और बतावेगा एक आइटखवेरक दौर दर नारकोटिका टेररिस्म इंटेलिजेंस तेमा पांच मिला के सबन पकड़ी से हमारी जनता। साथ ही साथ बताए गए हैं तो लोग जाने जो क्वेकवा चोरी भैला खैर फेस के पुलिस ब्यूरो में बड़ा हाल एंड ट्रैक कर बारे में भैला हमारी जनता बड़ी हाल एंड ट्रैक भैला और बताए गए है तीन चार गो उसको तू पकड़ा रहा, अब देखो दुई गो और पकड़ाई गई है देर द पुलिस मानेश्वर आन खहोदन बोले हैगा जहाँ पे एलफ गो सिलेंडर भरल ला एगो ऑफ्सला कंटेनर में पुलिस तरह खैर फ्लाइट पे वहाँ पे पुलिस अमतना सी बी इस वर्कसाम ऑफ द अफदेलिंग फन RBT और बोले का ट्रेन अब धरला बोले कि सिपहिया पकड़ाए गए ट्वी पुलिस मानन वर्कसाम इन द अफदेलिंग फन फ्रॉड आनखाउदन एंड फर्सिगरिंग स्टेल तो पकड़ाए गए हैगा भैया एहू और बताए गए एगो अन सेप फ्लेशन में फ्लुई बार कोकेन ऑन द स्कैप इन अंतवेरपन भैया साबुन एगो फ्लुई बार हैगा अंतवेरप में जाए के ओमा कोकेन मिलल है 20 सितंबर के फ्लुई बार बातचीत हुए है हमारी जनता। साथ ही साथ यहाँ बताई गई हैगा हम चलते हैं कोंगो के बारे में। रिपब्लिक कोंगो में एम्बोला जो है बड़ा जो फर्स्ट प्राइज भैल है बोले है सीत आंस बोले अन प्लुक मन एंड फ्रॉम इन विद द बस्कैरम पकड़ लो फॉर द फ्लुक्टिंग इन कम 39 जारिग फ्रॉ दी कोर दारफोर मेट एम्बोला नार सिकन हैस इस गब्राग तब बोले हैगा इक बेन नीट बंग ओम दिट वर्क टू डून मर टोख मेंस इट इज बस मेटलक एम्बोला केतरा आदमी मर गए तुलन जानो हैगा हाइटी के प्रेसिडेंट के सबन 2021 में सबन माढाड़े रहा यूफनेल मोइसी के एकर बारे में बताए गए है हाइटी में ओवर खबराक ना अमेरिका पकड़ान है द फरराख्तन onder wie voormalig Haitiaanse overheidsmedewerking Okanamba Joseph Badio, oude 17 Colombianen, bullen die volgens Amerikaanse en Haitiaanse autoriteiten als huurlingen zouden hebben gefunctioneerd, verschenen zomaar aan Miami rechtbank met Zabjaiga, Amerikaanse militaire vliegtuigen Port-au-Prince mee. De verdachten zaten in Haiti al jaren vast. In verband met de zaak, Haitiaanse autoriteiten hebben besloten hem in Amerika over te dragen, omdat de rechtgang in eigen land ernstig is vastgelopen. Bollega 2021 met 7 juli ke moordse banjaanse maredaha maadharera ex-president Moiseke, 53-jarige leeftijd in woning bij de Port-au-Prince mee. Bolle zijn vrouw, Bolle raakte bij de aanval ook gewond. Mensen, Amerikaanse aanklager, was de operatie onderdeel van internationale complot dat grotendeels vanuit Zuid-Florida werd voorbereid in de gefinancierd. De huurlingen Marida Otra Admi Pagraike, Abujay Amerika met Bahia, Ego 28-jarige Admi, Kisiriname met Saban Pagrise, Ego Poswa Larekake, Ontugkalera Pleegkindke, Ego 28-jarige man, 20 september ke. Ook is een pakkelezing aan 12-jarige pleegzusje. Op een ook een ontuchtkaler. Op ik is pakkelijke sipahin panker is een pakkelijke hemari janta. To je is een bemaand he jo aanplukko hem. Aan het kisamachar me bataan diya he. Aan sunne ke liye bahut bahut dhanibad. Shukriya dosto. Yahan tak tha. Hamara aanj ka देश और विदेश का समाचार जो आपको हम सुनाए हैं।

आपको बताने दोस्तों कि धनतेरस को शाम को करीब 7 बजे से हम लाइव करोक करेंगे रेडियो फोन पर। आप लोग जरूर हम सबका प्रोग्राम जरूर सुनना।

दीवाना हुआ पागल नोक स्टेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारो।

सलमान ए रानी मुखर्जी। इन क्यूगनहॉफ।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज पर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डरी कैनेडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूं तेरा नाम।

0: बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम। फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तिक का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: मासी नाज़ मैं बहुत

तुम मिली जहां मिल गई। दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके।

तुम तो प्यार हो हो सजनी, और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए। फिल्म शहरा का ये फिल्म लिखित इंद्रिय शस्त्र का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना लिखित निघ्न शस्त्र का है, और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिल के सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होंद निहन शस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकंद के प्यारे, लक्ष्मीकंद प्यारे लाल के साथ पे। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहां से हम चला देते हैं और यहां से मेरे दोस्ती।

और ओ दोस्तों, मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन नर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी, ये गाना है फिल्म नूरजहां का, ये गाना है, आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाउन के प्रोग्राम सुन सकते हैं, www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

वैसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। और ये है लता जी, इसका गाना इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहां पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए है वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हम में भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या?
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों। अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाने से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पे बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना, तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रवि की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 55 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानू राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े है बाकी दिल से बहुत खोटे है हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू।

और हमार भौजी लोन कहते हैं दिल में बहुत दर्द है। डॉक्टर के पास गया। जी हाँ हमारे प्यारे और प्यारे दोस्तों, कहते हैं दिल में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने गर्लफ्रेंड को, हमारा फ्रेंडेन को कमी बताई। और क्या बताए दोस्तों, आप खुद ही सुनिए कि अगर जल्दबाजी में शादी करके जीवन बिगाड़ोगे, सोच समझ कर करोगे तो कौन सा तीर मार लोगे हमारे दोस्तों, कौन सा तीर मार लोगे। आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी और कवाली से भी आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। आओ सुना जाए। और ये है परमाश्री मन्ना देई, आशा भोसले फिल्म का नाम है बरसात की रात, और मधुबाला भारत का ये फिल्म है ना तो करवेटे की तलाश है, और ये पुरानी गीत है। आओ मिलकर सुना जाए हमारे प्यारे दोस्तों।

ना तो करो की तलाश है मन रे अशवोश्री का ये गीत वे फिल्म का नाम है बरसात की रात मधुबाला और भारत का ये गीत। दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ शायरी सुनाएंगे और कुछ चुटकली शायरी आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। दोस्तों कहते हैं माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, शादी कर लिए जिसे हमने वो तो निर्धन नारी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कहते आजकल के जमाना में कितने लोग हैं जो बहुत टिकटॉक पे जाते हैं, कितने लोग भैया फेसबुक पे जाते हैं, कितने व्हाट्सएप पे जाते हैं, कितने लाइव बातें करते हैं और क्या क्या होता। तो सबके लिए एक शेर हम यहां से कह देते हैं कि तो टिकटॉक के रानी, अरे टिकटॉक के रानी तू है, टिकटॉक के रानी और मैं हूं फेसबुक का राजा, तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूं फेसबुक का राजा, मिलाना है तो व्हाट्सएप पे आ जा। जी हाँ दोस्तों, जब मिलना है तो जॉनी के व्हाट्सएप पे आ जा। और दोस्तों और यहां से हम कुछ प्यार भरे गीत आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते बीबी भी हक की याद जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है भैया। और चलते हैं फिर मिलोगे कभी, कभी फिर मिलोगे ये रात फिर ना आएंगे। और ये गीत है आशा जी के और परमा श्री मोहम्मद रफी और विश्वजीत का फिल्म शर्मिला टैगोर जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और फिर मिलोगी कभी, और ये रात फिर आएंगी, ये रात फिर आएंगी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी कुछ चुटकुले यानी फनी शेर, कुछ हंसमुख फनी शेर आज सुनाएंगे कि मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत। खूब ठीक से सुनना दोस्तों, मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत, पलट कर उसने जवाब दिया जैसे बनमाश तेरी सूरत। और दोस्तों ये सब प्यार भरी बातें आज क्यों हम लोग के बताते हैं कि कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता। ये तो सच बात है ना दोस्तों, आप सब कुछ वादा कर सकते हैं लेकिन मौत कब आ जाएगा इसका आपको और हमें मालूम नहीं है, तो वो वादा तो आप कर नहीं कर सकता है ना दोस्तों। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, जमीन मिले तो बंजर और आदमी मिले तो खंजर। तो हम जाते हैं दोस्तों, मेरे पैरों में आम घुंघरू बांधो, फिल्म के नाम है सुंगरुस नई खतीन अख्तशस्त का, जिसमें दिलीप कुमार ने परमा और खन्ना ने काम किया है, परमा शिन मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और मेरे पैरों में क्या बांधेंगे भैया, हड कड़ी नहीं बांधना, और जब बांध दो घुंघरी तब नाच के घुंघरू हम सुनाएंगे कि हम क्या और कैसे नाचते हैं। और दोस्तों, और यहाँ पे हम बताते हैं कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं कि पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल क्यों और मिले, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ता कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। नोह के रसरास की कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल कोई और मिले हमें तो ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। तो ये सब बात है दोस्तों। और कहते हैं, मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, हट हो गई जब जब मैंने देखा वो मेरे 5 रुपया के पेन भी ले गई। तो दोस्तों, हम और आगे को चलते हैं, और ये भी गीत है, और ये है गाम, और ये है मुकेश का और नैतिके लता मंगेशकर का ये गीत है, धीरे धीरे बोल कोई, जोर से ना बोलिए नहीं कोई सुन ना ले, और जब कोई सुन ले तब अप्पा मारी, तो जोर से ना बोलिए, धीरे से बोलिए।

धीरे धीरे बोल, और ये धीरे धीरे बोलियो, नहीं जब कोई सुन ले तो बप्पा मैया मारी, और अगर सुन लेगा भैया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। कि कहते हैं किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, किस किस का नाम ले अपने, इतना ढेर आदमी भैया जो बर्बाद करी से यहाँ बताई से, किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, बहुत लोग आया देने दुआएं मेरे शादी में। तो जितने लोग आए थे दुआ देने को शादी में, वो सब भाग्यदार है दोस्तों, यहाँ पे बताए गए हैं उसके बर्बादी में। आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, दिल में तो होती ही नहीं होता, तो साला टूट का से टूट कैसे जाता है। तो दोस्तों तीसरी कसम की ओर हम बढ़ते हैं, और तीसरी कसम एक फिल्म है, वो है नेहती शस्त्र शस्त्र के, और वो है मैथिली मुकेश ने इस गीत को गाया है, और ये बहुत पॉपुलर गीत है दोस्तों, कोई ज़माना में अभी तक लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि इसको हम चला देते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, अभी बताए थे ना दोस्तों, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं मत भूलना, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, और क्यों, क्योंकि कुछ रिश्ता जिंदगी भर याद आते हैं। और हम चलते हैं इस गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

और सजनरी और झूठ मत बोलो, और ये झूठ बोलना कभी कभी लोग को ये धंधा हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ गीत में बताए गए हैं कि झूठ मत बोलो, अगर जो झूठ बोलेंगे भैया तो कौआ काटेंगे। और माइती मुकेश इस गीत को आपको सुनाएं, फिल्म का नाम है तीसरी कसम, फनी खती होंद इनसेसन सस्त। दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बताते चलाते हैं, बढ़ाते हैं, कहते हैं दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं, ये ग्रुप है नवाबों का, यहां कोई किसी से काम नहीं। ये भी कोई एक शायर है दोस्तों, कहते हैं रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, दिल में ख्वाबों का कमी नहीं होती, हम चाहते हैं उनको अपना बनाना पर उसके पास अपनों को कमी नहीं होती, वो हमें चाहते हैं ने भैया, तो हम ईटा मार के पत्थर चलाकर और क्या करेंगे। तो ये बात होते हैं और मोहब्बत करने वालों को और मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को सेवा कर। दोस्तों आप लोग बैठ गाना में ये गीत सुना होगा, कितने लोग बोले योकर ऐसा गाना है, योकर ऐसा गाना है, लेकिन आज हम आप लोग को एक ओरिजिनल गीत को सुनाएंगे जो नाइटिंगेल लता मंगेशकर इस गीत को गाए हैं, और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरी आंगन की नीखंतीन अख्तन जीवन तक का, और कितने हमारे सूरीनाम के कलाकारों इस गीत को गाए हैं और अन्य देशों के कलाकार भी इस गीत को गाए हैं। और जिसको मालूम नहीं है तो वो बोले वो अडमिया गाई से, वो अडमिया नहीं दोस्तों, ये गीत हमारा दीदी स्वर्गीय और हमारा लता जी नाइती की लता मंगेशकर ये गाया हुआ गीत जो आज हम आप लोग को ओरिजिनल सुनाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए।

सांप तिलक सब छीन ली और मुझसे नैनाल मिलाई की। और दोस्तों उसी दिन से व्हाट्सएप से हमें नफरत हो गई। आप जानते किस लिए ना? ये व्हाट्सएप तो आज पूरा दुनिया में चलते दोस्तों। और कहते हैं उसी दिन से व्हाट्सएप से नफरत हो गई जब बाल कटवाते के लिए आदमी ने चंदा मांग लिया। ये कौन सा बात है दोस्तों? और उसके बाद हम चलते हैं प्यार भरी बातें और प्यार भरी गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों। और सुनाता ही रहेंगे। हम चलते हैं एक गीत की ओर। वो है, वो भी है नाइटिंगेल लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है। और ये मूवी के नाम, फिल्म के नाम है असली और नकली। असली और नकली। और ये फिल्म बना है 1962 में। और यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि इस देवानंद ने फिल्म में काम किया है और कितने लोग हैं जिसका नाम भी देवानंद लोग फिल्म में देखकर धर देते अपनी बेटी को। और यहाँ पे बताई गई कि तुझे हम अपने जीवन की डोर से बांध लिया है, ना ततई से बांध लिया है, केती से बांध लिया है, अपने जीवन के डोरा में, मतलब अपन लीफस पार्टनर तुझे हमने बना लिया है। और फिल्म के नाम है असली और नकली। आओ मिलकर सुना जाए।

और मेरी जीवन की डोर पर। और क्या हुआ भैया, जीवन की डोर से बांध लिया है। और जीवन की डोर में कौन बांधते हैं, जब किसी से आपको आपसे प्यार हो जाता है और अपनी जिंदगी उससे और चलाना चाहते हैं और कहते हैं ऐ चांद कुछ बेवफाई के, यानी कि टूटा हुआ दिल का शेर हम आप लोग को, जुदाई का शेर आप लोग को हम। और यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ऐ चांद चला जा क्यों आँच है मेरे चौखट पर, ऐ चांद चला जा क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गई वो शक जिसका धोखे में हमने तुझे देखता था, यानी कि उसका जो लड़की था या लड़का उसका वो चांद देखता था, अब वो धोखा से चला गया। तो वो कहते हैं कि ये चांद असली चांद को कहते हैं जो रात को निकलते हैं, कि ऐ चांद चला जा क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गया वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझको देखते थे। ये बात है। और कहते हैं कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, इस हाल में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी करीबी, किशोर जी और लता जी का फिल्म का नाम है आसपास नीखते होंद एंड एन तख्त का ये गीत है, जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा भी इसमें और काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और तुझे दिल में जब हम बन कर लूंगी तब उसको चाभी हम उठाए के बोले पानी में बिक देवे, और जब पानी में हम बिक देवे तो कैसे तू दिल में से निकलिए, ये बात हुआ है हमारे दोस्तों। और दोस्तों ये गीत क्या होगा, और ये गीत है चल चमेली। अरे चल चमेली, और कहाँ चलेगा चमेली, हप्रे बाग में चल। फिल्म के नाम है क्रोधी निखते इन तख्त का, ये फिल्म है, आओ मिलकर सुना जाए।

हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बस दोस्तों, आप लोग को हम कुछ प्यार भरी मस्त भरी गीतों से आज भी आप लोग को हम पुराने गाने कुछ नए गाने से आपको हम सेवा करेंगे। चलते हैं भीगी रात नेक डिफेंस का ओल्ड सॉन्ग परमाश्री मोहम्मद रफी करोड़ों का दिल चुराने वाली नाइटिंगेल लता मंगेशकर आशा भोसले इस फिल्म में मीना कुमारी काम किए हैं और अशोक कुमार। आओ मिलकर सुना जाए।

और भीगी रात 1965 का ये फिल्म है दोस्तों, हम और आगे को लेकर अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी गीतों को और आगे को बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, अगर बात करना है तो दिल से करो, ऊपर मन से करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नेहती जीवन का ही फिल्म है, फिल्म के नाम है सच्चा और झूठा, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज ने काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और क्या बात करती हो राजेश खन्ना का और मुमताज का ये रोमांटिक सॉन्ग यानी फिल्म थी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी रोमांटिक प्यार भरी गीतों की यानी सॉन्ग आपके हम सुनाएंगे और रेडियो फहम के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों देखा जाए और कितनी दिनों बाद आज हम आप लोग को फिल्म पकीसा का एक गीत सुनाएंगे। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार ने काम किए थे। और आज हम आप लोग को इस गीत को कितने दिनों बाद सुनाएंगे। नीहती हों का ये सॉन्ग है।

और ये गीत फिल्म पकीसा का निकाले हुए गीत सॉन्ग हम आप लोग को कितनों दिनों बाद आप लोग को हमने सुनाए हैं। और दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये हम तुम चोरी से और चोरी में छिछोरी हो जाते हैं और तोरी में क्या क्या ना हो जाते भैया, चोरी में क्या क्या न हो जाते हैं। और ये है फिल्म धरती कहे पुकार का ये सॉन्ग है जितेंद्र नंदा और नाइटिंगेल लता जी और करोड़ चुराने वाला मुकेश माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और ये तुम जो हम तुम चोरी से और बने भी है कोंची एक डोरी से जइयो कहाँ ले हुजूर। उसके बाद में हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है सच्चाई मजेदार समाचार, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक हम 6 से यानी कि 6 से 9 बजे रात्रि तक चलाते हैं, मंगलवार को 5 से 7 बजे तक और रविवार को दिन में 1 बजे हम अपना यानी प्रोग्राम को चलाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कौन दिशा से मैं लेके चला रे भतुया, नदिया का पार नदिया के पार फिल्म के नाम है। हेमलता जसपाल सिंह इस गीत को रविंदर जैन के सॉन्ग में और इस गीत को गाया है, एक बहुत मस्त भरी प्यार भरी गीत है। फिल्म के नाम है नदिया के पार नेह दिन होंद एंतुन तख्त का ये गीत है। और आओ मिलकर ये गीत को सुना जाए, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हमें ही आशा उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा जरूर लगेंगे। आओ सुना जाए।

0: और मन ने भरमाई और जाके रे बतसुइया कौन दिशा में लेके चला रे बतुइया। नदिया कपारी फिल्म का नाम है। हेमलता इस गीत को गाया है और हम चलते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम लेकर आगे। और ये है इस फिल्म किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है और आओ मिल का सुना जाए कौन सा फिल्म का गीत है अभी हमें पता चली गई तो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ये कौन सा फिल्म का ये गीत है। लेकिन इसमें काम किया है लीना चंद्रवरकर और संजीव कुमार। गम का फसाना लेना, गम का फसाना लेना। तो आओ सुना जाए ये कौन सा गम है और कौन सा फसाना है हमारे दोस्तों। ये रोमांटिक मूवी का सॉन्ग है, क्लासिक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। आओ सुना जाए।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

और गम का फसाना बन गया। अच्छा किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। हमारे दोस्तों हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत क्या होगा आओ मिलके सुनाई गोरी तेरी गांव बड़ा प्यारा। और कभी कभी जो गोरी लोन होता है वो गांव में रहता है देहात में रहते हैं और ये गीत भी है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है। तो आओ सुना जाए इस गीत का। फिल्म का नाम है चित्त चोर नीघंती ससीवत का। ये गीत है यूसुफ दास ने इस गीत को गाया है।

गोर गोरी तेरा गांव ना सिर्फ तेरा गांव, तुम भी बहुत प्यारा है, तुम भी बहुत प्यारा है गोरी, जैसे तुम प्यारा है इसे तुम्हारा गांव भी प्यारा है। और इस फिल्म का नाम है चित्त चोर, जिसमें शरीना वहाप ने काम की है। और इसके बाद हम पुरानी गीतों की भान प्रोग्राम लेकर चलते हैं। सॉन्ग के नाम है दिल विल प्यार व्यार, अरे मैं क्या जानू भैया हम तो छोटा लड़का है। फिल्म के नाम है शागिर्द नहीं हती सीवने सस्तक का। और ये प्यार यार कुछ जाने भैया, अगर ये प्यार यार आपको मालूम है तो हमें आप लोग जरूर बतला देना, हमें भी मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो आओ इस गीत से सुना जाए तो शायद मालूम हो जाएगा।

और ये दिल विल प्यार यार जॉनी के भी मालूम ना है दोस्तों, अगर आपको जो मालूम हो तो हमें जरूर बता देना कि ये दिल विल प्यार यार क्या होता है। और अगर आपकी दिल जो है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, किसी आम के दिल में नहीं बसा है, तो ये गीत आपको सुनना चाहिए।

फन होंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

ये भी रफीसा है बाबाशाह जी, कारवां में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। कार्यक्रम आप पेश है तो लीजिए इस तरह से।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म स्वयंवर में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। आशा जी है फिल्म हमसाया ओपी नैयर के साथ।

अच्छा जी, आपको सुनाए ओपन एयर के साज पर फिल्म हम साया में से निकाले हैं ये शानदार गीत। चलिए, ये गीत बहुत दिन हुए शायद आप भी नहीं सुने होंगे, एक दूजे के लिए।

एक हिंदी में गा रही है और एक तमिल में बोल रहा है, तो मुश्किल तो अवश्य पैदा होगा। आपने सुने ये शानदार गीत हमने पेश की।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आप सुना रहे थे कार्यक्रम में ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं आपने किशोर कुमार जी के वर्जन यानी किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गीत बहुत बार सुने हैं। चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में जो हम कम चलता है। तो लीजिए लता जी फिल्म महबूबा में से।

फिर भी मेरा मन प्यासा, लता जी की आवाज़ में फिल्म महबूबा में से निकाले हैं आर डी बर्मन के साथ पर हमने पेश किए। VVV.FM.NL पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूं, तो क्या ख्याल है मैं आपको सुनाऊं ये गीत, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। हाँ, फिल्म पतंगा में, सॉरी कटी पतंग में से निकाल रहे हैं।

किस गली में तेरा घर न हो बालमा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो भी एक धमाका दिए धमाकेदार गीत है।

money.

ये भी कारवां में से निकाले हैं। आरती बर्मन के साज पर आशा जी आपको सुनाए। चलो ये सुनते हैं लता जी।

जोगी ओ जोगी प्यार में क्या होगी, ये गीत आपको सुनाया गया। फिल्म है लाखों में एक और लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में पेश हुआ फिल्म गैम्बलर में से निकाल कर निकली सेवन तक का ये गीत एस दे बर्मन के साज पर हम आपको सुनाए। जी हाँ, आप चुने पाओ हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं।

तुम ही तो हो जिसका सपना मैंने देखा था। ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ।

नथनिया हाले तो बड़ा मज़ा होए, ये चटपटा चुटकुला गीत हम आपको सुनाए फान हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये देखते हैं, ये लॉफिन टोक्यो का है। जी हाँ, लॉफिन टोक्यो इस तरह से है।

फिल्म लव इन टोक्यो में से निकाल कर ये प्यारा गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए ये गीत भी आपको सुना देता हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर

जाने मन एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की। आप भी हैं और मैं भी हूँ। अच्छा, तो आप दोनों हम दोनों हैं, आप श्रोताओं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? ये गीत के बोल थोड़ा, इसे सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुन लीजिए।

फिल्म गैम्बलर में से निकाले हैं निगत एन से इवन तक का, ये देवानंद का गैम्बलर है, ग्रेट गैम्बलर नहीं गैम्बलर, निगत एन से इवन तक का ये गीत लता जी की आवाज़ में और एफ एम ग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद

गा दीवाने झूम के मैथ मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

दिल से दिल की डोड़ बांधे ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का, मैं तो मुकेश। मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं और मैं दनाख मिस्त्री में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत। लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया, हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

अभी हमसे मुझसे भी खफा रहना, माइकल मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाएं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाएं। तो अगला गीत है ये फिल्म गाई तो आपने अवश्य देखे होंगे, एस डी बर्मन के साज है और लता जी की आवाज़ में ये सेमी क्लासिकल सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

पिया तुसे नैनाला गिरे लता जी की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं एस डी बर्मन के साज पर और था फिल्म गायद में से निकाल कर। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बस आपकी जानी पहचानी गीत है। जी हाँ, एक बार फिल्म आदमी में से निकाले हैं लता जी की आवाज़।

फिल्म आदमी में से नौशाद अली के साज पर लता जी की आवाज़ में हमने पेश की कारी बदरिया, और लता जी के बाद हम पेश करते हैं एक बार फिर आशा जी को, और आशा जी कह रही है चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो चलो सुनते हैं और जानते हैं कि चेहरे पे कितनी खुशी आती है।

लता जी की आवाज में हम आपको सुनाएं, जहाँ तक मेरा ख्याल आप बहुत इत्मीनान से सुन रहे होंगे ये गीत और बहुत सुन रहे थे ये शानदार गीत उफरफान हिंदुस्तानी रेडियो। अच्छा चलिए, गीत तो समाप्त हो गया, तो गीत अगर जो समाप्त हो गया तो हम पेश करते हैं अगला गीत, और जिसमें लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार है, फिल्म रूप तेरा मस्ताना।

दिल की बातें दिल ही जाने, लता जी और किशोर कुमार जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और हमने पेश की फिल्म रूप तेरा मस्ताना में से निकाल कर 1972 का ये फिल्म है, आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलो हम पेश करते हैं, बढ़ते हैं चोरी चोरी के ओर। फिल्म चोरी चोरी में जितनी गाने हैं सब बहुत प्यारा है, उनमें से एक गीत मैं निकाल रहा हूँ, बस आप सुनिए कौन सा गीत। लता जी और मन्ना डे जी,

पंछी बनू बन के फिरू, लता जी की आवाज में फिल्म चोरी चोरी में से निकाले हैं ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए आपको धीरे धीरे मैं कहीं और ले जा रहा हूँ, जी हाँ धीरे धीरे कहीं और ले जा रहा हूँ, और आपको सुनाता हूँ ये गीत।

The Man with Golden Voice, तलत साहब में आपको सुनाए हैं, उनके आगे गमे दिल भुलाना पड़ा और ये शानदार गीत छुपाना पड़ा। और ये शानदार गीत हमने पेश किया वो फरफाहून हिंदुस्तानी रेडियो www.fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के इन मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। हमने कहा था धीरे धीरे आपको पीछे लग जाएंगे सालों में, तो लीजिए हम आपको ये सुना रहे हैं। क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं इस तरह से?

हाँ, दिल से मिला ले दिल प्यार कीजिए। और ये गीत चला लता जी आपको सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, हमने कहा था आपको पीछे पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, तो लीजिए पीछे ले जाते समय हम आपको ये भी सुना रहे हैं उसी समय का। ये बहुत प्रचलित गाना था, बहुत पॉपुलर था, कौन इसे नहीं जानता।